मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स, डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 अगस्त सन 2026। सुबह के 5:57 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
2: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों, रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।

0: वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट के मल्हार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेन जी से धैर्य और जिम्मेदारी के साथ अर्थव्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को भारत की अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने वाले कार्यक्रम जरूरी हैं, इससे उनमें देश के प्रति जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू चेंग सू और टैन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया ई फैन और झांग शू शियान को हरा दिया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। इस बीच पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज इसके अंतर्गत तिलहनी फसलों की देखभाल विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम तिलहनी फसलों में लगने वाले कीड़ों, उनकी पहचान, उनके नुकसान करने के तरीके तथा उनके नियंत्रण के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। खरीफ की तिलहनी फसलों में तिल, मूंगफली, सोयाबीन एवं अंडी प्रमुख हैं, लेकिन अपने यहाँ मुख्य रूप से तिल, सोयाबीन एवं मूंगफली की ही खेती होती है। खरीफ ऋतु में मौसम की अनुकूलता के कारण कीड़ों का प्रकोप अपेक्षाकृत अधिक होता है और उपज का एक बड़ा भाग इन्हीं कीड़ों के कारण कम हो जाता है। अतः ये बहुत ही आवश्यक है कि इन कीड़ों की सही पहचान करके उनका व्यापक नियंत्रण किया जाए। तिल की फसल में मुख्य रूप से 2 कीड़े लगते हैं, एक तो तिल की सूंड़ी और तिल की पत्ती व फल की सूंड़ी। ये सूंड़ियाँ तिल की कोमल पत्तियों और फलियों को खाती हैं तथा इन्हें जाला बनाकर बांध देती हैं। अगर इस कीट का प्रकोप तिल की फसल पर होता है तो मिथाइल पैराथियन 2% चूर्ण की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुरका करना चाहिए। तिल में एक और सूंडी इस फसल को नुकसान पहुंचाती है। यह आकार में काफ़ी बड़ी होती है और हरे रंग की होती है, तिल की पत्तियों को खाती है। इसके नियंत्रण के लिए इंडोसल्फान 35 EC की 1.25 लीटर मात्रा को 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। मूंगफली की खेती भी अपने यहाँ बहुतायत रूप से होती है। इसमें 2 कीड़े फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, एक तो मूंगफली की सफ़ेद गिडार और दूसरा दीमक।

0: सफेद गिटारें पीलापन लिए हुए सफेद रंग की होती हैं, जिनका सिर भूरा कथई या लाल रंग का होता है। ये छूने पर गेंडुल के समान मुड़कर गोल हो जाती हैं। इसकी मादा ही नुकसान पहुंचाती है, नर नहीं। मादा जड़ों को खाती हैं, जिससे पूरा पौधा सूख जाता है। यह कीड़ा पहली वर्षा के बाद आसपास के पेड़ों पर आकर मैथुन क्रिया करता है तथा फिर 3-4 दिन बाद खेतों में जाकर अंडे देता है। यदि प्रौढ़ कीट को पेड़ों पर ही मार दिया जाए तो यह नियंत्रण ज़्यादा प्रभावकारी रहता है। इस हेतु क्लोरपायरीफास या क्विनालफास दवा प्रयोग करते हैं। इसकी 4 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। दीमक का प्रकोप मूंगफली में उस समय होता है जब जमीन में नमी की कमी होती है। ये जड़ों तथा फलियों को काटती हैं। जड़ कटने से पौधे सूख जाते हैं और फली के अंदर मिट्टी भर जाती है। इसके नियंत्रण के लिए ये ध्यान देना जरूरी है कि खेत में हमेशा नमी बनाए रखें। सोयाबीन में फली छेदक और बिहार रोमिल सूढ़ी का प्रकोप होता है। फली छेदक कीट की सूढ़ी सोयाबीन की फलियों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इसकी रोकथाम के लिए क्विनालफास 25 EC की 1.5 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। सोयाबीन की बिहार रोएदार सूढ़ी शुरू में पत्तियों को खुरच कर खाती हैं तथा बाद में पूरे खेत में बिखर कर पत्तियों को खाकर पौधों को नंगा कर देती हैं। इससे बचाव के लिए इंडोसल्फान 35 EC की 1.25 लीटर मात्रा को 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अंडी में मुख्य रूप से एक ही कीड़ा लगता है, वह है कैस्टर सेमीलूपर। इस कीट की सूढ़ियाँ स्लेटी काले रंग की होती हैं, जो कि अंडी की पत्तियों को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। अंडी की फसल में अगर इस कीट का प्रकोप होता है तो DDVP 76% की 500 मिलीलीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर तिलहनी फसलों में कीट नियंत्रण का कार्य करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज इसके अंतर्गत तिलहनी फसलों की देखभाल विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

भक्तों के लिए विष का भी पान करने वाले कृपालु, भक्तों के कष्ट हरने वाले सबसे दयालु और कड़कड़ में वास करने वाले भगवान शिव के श्री चरणों में हम सभी भक्तों का बारंबार प्रणाम।

भावे विद्यते देव, कहते हैं कि भाव में वो शक्ति होती है कि वो अविदित परमात्मा को भी विदित कर लेता है। और अपने बाबा भोलेनाथ तो इतने दयालु हैं कि जो भी उनके शरण में जाता है वो उसे अपना ही बना लेते हैं।

अपने आराध्य का स्मरण, उनके नाम का सुमिरन और उनके भक्ति की लौ हमेशा अपने हृदय में जलाए रखना ही इस जीवन का सार है। तभी तो प्रभु कहते हैं कि जहां भगत मेरो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, पीछे लागा सदा रहूं कबहू न छाड़ू साथ।

दुनिया में अगर सबसे खूबसूरत कोई रूप है तो वो है माँ का, क्योंकि ममता का दूसरा रूप ही माँ का है। माँ के वंदन का, उसके रूप का वर्णन का और उसके गुणगान का हम भक्तों को सौभाग्य तो माँ के कृपा से ही मिलता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आराधना। आज के कलाकार थे अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, देवाशीष दासगुप्ता और संजय तलवार। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु।
1: श्री रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों के साथ टहलते हुए एक नदी के तट पर पहुंचे। वहां मछुए जाल फेंककर मछलियां पकड़ रहे थे। एक मछुए के पास जाकर स्वामी जी खड़े हो गए और अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग ध्यानपूर्वक इस जाल में फंसी मछलियों की गतिविधि देखो। शिष्यों ने देखा कि कुछ मछलियां तो ऐसी हैं जो जाल में निश्चेष्ट पड़ी हैं। उन्होंने निकलने की कोई कोशिश ही नहीं की। कुछ मछलियाँ निकलने की कोशिश तो करती रहीं परंतु निकल नहीं पाईं, और कुछ जाल से मुक्त होकर पुनः जल में क्रीड़ा करने लगीं। परमहंस ने शिष्यों से कहा, जिस प्रकार मछलियाँ तीन प्रकार की होती हैं उसी प्रकार मनुष्य भी तीन प्रकार के होते हैं। एक श्रेणी उनकी है जिनकी आत्मा ने बंधन स्वीकार कर लिया है और वे इस भवजाल से निकलने की बात सोचते ही नहीं। दूसरी श्रेणी ऐसे व्यक्तियों की है जो वीरों की तरह प्रयत्न तो करते हैं पर मुक्ति से वंचित रहते हैं। और तीसरी श्रेणी उन मनुष्यों की है जो चरम प्रयत्न के द्वारा अंत में मुक्ति प्राप्त कर ही लेते हैं। परमहंस की बात समाप्त हुई तो एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव एक चौथी श्रेणी भी है जिसके संबंध में आपने कुछ नहीं कहा। गुरुजी ने कहा, हाँ चौथी प्रकार की मछलियों की तरह ऐसी महान आत्माएं भी होती हैं जो जाल के निकट ही नहीं आती, फिर उनके फंसने का प्रश्न ही नहीं उठता।

0: मनुष्य जन्म मिला परंतु इसे भोग में प्रमाद में गंवा दिया तो इससे बड़ी अदूरदर्शिता और क्या हो सकती है। इसीलिए तीर्थंकर महावीर कहते हैं, गाढ़ाए य विवाग कम्मणों संयम गोयम मा पमाए ए, अर्थात कर्मों के फल बड़े प्रगाढ़ तीव्र होते हैं। इसलिए हे जीव, क्षण भर के लिए भी तू प्रमाद न कर। इस अस्थिर एवं अनित्य मानव देह को पा करके इसके द्वारा नित्य शाश्वत सत्य तत्व को जानने का प्रयास कर आत्मकल्याण की प्राप्ति करनी चाहिए। यह मनुष्य जन्म का प्रमुख कर्तव्य है। श्रुति कहती है कि यदि यही मनुष्य अपना आपा माम देह ही मानता है, देह के अनुकूल ही उसकी खान पान में रुचि है, उसे ही पुरुषार्थ मानता है, तो वो लौकिक जीवन जीकर बिना सिद्धि के ही चला जाता है। दूसरी ओर आत्मसत्ता को देहादि से परे नित्य सत्ता तथा परलोक में आने जाने वाली मानता है तो पारलौकिक पुरुषार्थ में उसकी रुचि बढ़ती है। वो तदनुसार जीवन बंधनों से मुक्ति पाता हुआ चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। अपने अपने अभिमान चिंतन लक्ष्य निर्धारित करके मनुष्य अपना पुरुषार्थ चुनता है। धर्म अर्थ व काम तीनों ही प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य भी हैं, साधन सिद्धि में सहायक भी। इन तीनों का सही परिमार्जित सामंजस्यपूर्ण दैनंदिन जीवन में व्यापार जीवन साधना की सफलता का हेतु बनता है। महाभारतकार ने शांति पर्व में कहा है, धर्म में फल की अभिलाषा अर्थात उसका सकाम हो जाना, अर्थ में निगूहन अर्थात उसे छिपाना, न उसका दान में सुनियोजन करना न उपभोग ही करना, ये तीन दोष पाए जाते हैं। इन्हीं को अहंता तृष्णा और वासना कहा गया है। इन तीन भाव बंधनों से मुक्ति को जीव मुक्ति या मोक्ष की संज्ञा दी गई है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। नेत्रदान महादान, नेत्रदान को अपने परिवार की परंपरा बनाएं। ज्योति वह अमूल्य उपहार है जो आप ही दे सकते हैं। नेत्रदान का संकल्प आज ही लें। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इसके अंतर्गत कैंसर रोग एक जानकारी विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर असीम मिश्रा।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर असीम मिश्रा, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर एवं टाटा मेमोरियल सेंटर वाराणसी में हेड नेक कैंसर सर्जन के रूप में कार्यरत हूं। तंबाकू से होने वाले जो रोगों की हम बात कर रहे हैं, जैसे मुंह का कैंसर है, उसके अलावा तंबाकू के कारण गले का कैंसर, जिसमें बोलते हैं वॉइस बॉक्स का कैंसर, लैरिंग्स का या फेरिंग्स का कैंसर, वो भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। और जैसे जैसे हमारे देश में शराब का सेवन बढ़ता जा रहा है, हमारा बिहेवियर चेंज होता जा रहा है, उसमें फेरिंग्स और लैरिंग्स जो इसको बोलते हैं, उसका कैंसर का इंस्टेंस भी लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस तरह का ये कैंसर जब होता है, इसमें आवाज के बदलाव आना शुरू होता है, या गले में ऐसा लगता है कुछ फंस रहा है, या गले में कुछ गांठ हो रही है, तो आपको तुरंत जांच करनी चाहिए, या आवाज में बदलाव आ रहा है तो तुरंत जांच करवानी चाहिए, ताकि ये बहुत ही पहली स्टेज में या अर्ली स्टेज में अगर पता चल जाएगी बीमारी तो उसका इलाज ठीक किया जा सकता है। तंबाकू से होने वाले और भी बहुत सारे रोग हैं हमारे देश में, जैसे हृदयघात का रिस्क बढ़ता जा रहा है, लकवे का रिस्क बढ़ता जा रहा है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रिस्क बढ़ता जा रहा है, ये सब भी तंबाकू के कारण होते हैं। और तंबाकू से ये जो रोग होते हैं, तो हमको ये जागरूक रहना है, समझना है कि देखिए जो चीज हमको इतना नुकसान कर रही है, जरूरी नहीं कि आपको कैंसर होगा तभी आप मानेंगे कि हाँ तंबाकू नुकसान करती है। आपको ये भी समझना है कि उससे और भी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं और आपको तंबाकू बंद करना है। और एक कैंसर सर्जन होते हुए मेरा ये धर्म है कि आपको ये बात समझाएं कि देखिए आपको किसी भी चीज का नुकसान होने आपके ऊपर हो जाए तब तक आपको उसका इंतजार नहीं करना है। हमको आपका इलाज नहीं, आपको कैंसर होने से रोकना है। हमको ऐसा समाज नहीं चाहिए जहाँ पे हमारे पास सभी सुविधाएं हैं, जहाँ पे हर तरह का इलाज हो सके। हमको ऐसा समाज चाहिए जहाँ पे किसी को कोई रोग

0: होए ना। इसके लिए अगर हमारे समाज में कोई इस तरह की चीज है, इतना विषैला पदार्थ है जो इतना नुकसान कर रहा है, उसको हमको तुरंत छोड़ देना चाहिए। जिस तरीके से हम गंदगी को अपने घर में नहीं रख सकते हैं, तो आप ये समझ लीजिए एक इंसेक्टिसाइड के रूप में जो पदार्थ यूज होता है, तंबाकू को हम लोग इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं, आप उसको खा रहे हैं तो वो कितना नुकसान कर सकता है आपको। जितने भी कैंसर होते हैं, मुंह के कैंसर खासकर, मुंह के कैंसर हम लोग जब भी इलाज की जो स्टेजेस होती हैं, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, ये स्टेज होती हैं इलाज कैसे करना है, क्या इलाज करना है। तो जब कैंसर, मुंह का कैंसर पहली, दूसरी या तीसरी स्टेज में होता है या चौथी स्टेज में भी होता है, तो इसका जो मुख्यतः जो ट्रीटमेंट होता है वो ऑपरेशन द्वारा होता है। इसमें सबसे पहले ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन के बाद जो फाइनल स्टेजिंग मिलती है हमको, जिसमें पता चलता है कि मुंह में कैंसर है, साथ में गले में फैला है कि नहीं है, वो स्टेज अगर ज्यादा हो रही है तो ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद रेडियोथेरेपी, बिजली की जो सिकाई होती है, उससे इसका इलाज किया जाता है। ये मुंह के कैंसर का यही एक इलाज है। उसके अलावा जो गले का कैंसर होता है, फेरिंग्स का कैंसर जिसको हम बोलते हैं, लैरिंग्स का कैंसर होता है, उसका मुख्यतः जो ट्रीटमेंट होता है वो रेडियोथेरेपी द्वारा होता है। उसमें सिकाई, रेडियोथेरेपी बिजली की जो सिकाई होती है, उससे इलाज किया जाता है। ये यूजली 7 से 8 हफ्ते में रेडिएशन दिया जाता है और उसके बाद वो ठीक होता है। उसके अलावा कीमोथेरेपी भी इसमें दी जाती है, लेकिन कीमोथेरेपी मुंह के कैंसर में प्राथमिक उपचार नहीं है। पहली स्टेज में कभी भी कीमोथेरेपी नहीं देनी चाहिए। हमको इससे बचना है कि हमको कीमोथेरेपी नहीं करवानी है पहली स्टेज में, क्योंकि उसकी वजह से जो नुकसान होते हैं, किडनी पे नुकसान होते हैं, बीमारी जब वो छोटी हो जाती तो उसका सही तरीके से फिर इलाज संभव नहीं हो पाता है। कैंसर का इलाज पहली बार में अगर अच्छी तरीके से हो गया, वही सबसे अच्छा चांस होता है मरीज के पास, तो हमको उसका इलाज समझना है कि मुंह का कैंसर है तो ऑपरेशन करवाना है, वो करना है शल्य चिकित्सा द्वारा। गले का कैंसर है, फेरिंग्स का कैंसर होता है या लैरिंग्स का कैंसर, उसका मुख्यतः ट्रीटमेंट रेडिएशन द्वारा होता है। तो हमको इस चीज की भी जागरूकता रखनी है ताकि हम लोग अपने सही इलाज के लिए जानकारी इकट्ठी कर सकें, उसको हम सही तरीके से इलाज करवा भी सकें।
1: कैंसर रोग एक जानकारी, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर असीम मिश्रा, कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

जीवन जीते रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान, नेत्रदान महादान। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

सुमंत्र से राम लक्ष्मण और सीता के वनगमन का वृत्तांत सुनकर राजा दशरथ के हृदय में हूक उठती है और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। रानियां विलाप कर उठती हैं। रानी कौशल्या अंतस में उठती व्यथा और सजल नेत्रों से सूर्यकुल का अंत होता देख रही है। महाराज को वो धीरज बंधा रही हैं। राम वियोग के अथाह सागर में डूबते अयोध्या रूपी जहाज के वे ही एकमात्र कर्णधार हैं। यदि उन्होंने भी धैर्य छोड़ दिया तो सबका डूब जाना निश्चित है। रानी के सांत्वना भरे वचन सुनकर महाराज आंखें खोलते हैं। उनकी जिह्वा पर मात्र एक ही रट है, राम कहाँ हैं? कहाँ हैं लक्ष्मण और उनकी प्रिय बहू जानकी? उनके सजल नेत्रों में वर्षों पहले का चित्र उभरता है, श्रवण कुमार के पिता अंधे तपस्वी का अभिशाप। रानी कौशल्या को वो दुखद कथा सुनाते हुए पुत्र विरह में शरीर त्याग महाराज दशरथ सुरलोक सिधार जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायन स्वर था श्रीकांत परगोयनकर और अनुराधा पौडवाल का। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अब आइए हम आपको जानकारी देते हैं आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे से। अखिल भारतीय विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती के अंतर्गत आप सुनेंगे वृत्त चित्र विज्ञान के रास्ते आजादी के मूल्य। प्रसारण समय होगा रात्रि 9:30। इन दोनों कार्यक्रमों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:45 पर और सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे ध्रुपद गायन। कलाकार होंगे आशीष कुमार जायसवाल। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8 आप सुनेंगे ए हरिहरन की गायी घसले। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे भजन। कलाकार होंगे शिवा मिश्रा। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वरबेला। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे आनंद कृष्ण मासूम का काव्य पाठ। शाम 6:30 पर प्रसारित किया जाएगा किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे प्रमुख आवश्यक खनिज तत्वों की कमी से पशुओं में होने वाले रोग लक्षण और उपचार विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर आशीष कुमार वर्मा। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे बाबूलाल यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत। इनके गाए लोकगीत आप सुन सकेंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर और दोपहर 1:45 पर। नन्ही दुनिया कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा शाम 5 से। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण

0: समय होगा शाम 5:15। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज की बात का विषय है स्किल डेवलपमेंट पर जोर दें। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे यूथ जंक्शन, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम अंगनैया का प्रसारण समय होगा दिन में 1:15 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है जीवन के आधार वृक्ष। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर स्वाति शर्मा से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत। विषय होगा सब्जियों का प्रसंस्करण और उद्यमिता विकास। इसी कार्यक्रम में आप गीत संगीत भी सुन सकेंगे। फिल्म संगीत के कार्यक्रमों में आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर कार्यक्रम रस माधुरी। शाम 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रसरंग। शाम 6:10 पर और शाम 7 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि। गैर फिल्मी गीतों एवं गजलों का कार्यक्रम कहकशा आप सुनेंगे दिन में 12 बजे से। दिन में 11 बजे से आप सुनेंगे हेलो फोन एंड फरमाइश कार्यक्रम, प्रस्तुति होगी अरुण पांडे की। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार आप सुन सकेंगे सुबह 10 बजे से और सतबहार फिल्मी गाने आप सुनेंगे मधुरमा कार्यक्रम में सुबह 8:45 पर। सुबह 7 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् परिष्काराः तस्य प्रशासनस्य कृते बाध्यता न, अपितु प्रतिबद्धता दृढ़ विश्वासश्च। तेनोक्तं यत् प्रशासनस्य नीतयः जनकल्याणपराः विकासोन्मुखाः प्रगतिवर्धकाश्च सन्ति। ह्यः सायंकाले नवदिल्ल्यां इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम इत्येतत् मञ्चं सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् तस्य प्रशासनेन परिष्कारेभ्यः स्पष्टा योजना निर्मिता अस्ति, यस्यां प्राथमिकता शासनस्तरीय परिष्कारेभ्यः प्रदत्ता अस्ति। स उक्तवान् यत् देशस्य भविष्यं सुरक्षितं कर्तुं भारतं नीति निर्माण स्तरे नवपरिष्कारान् करोति।
2: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्त धारा की, सप्त शक्तियों की बात की है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् तस्य प्रशासनं केवलं नियमेषु परिवर्तनं न करोति, अपितु तेषां नियमानां पृष्ठे विद्यमानायाः सम्पूर्ण दृष्टेः परिवर्तनमपि करोति। सः उक्तवान् यत् पूर्वं नियमसम्बद्ध दृष्टिः अनुमति पर्यन्तं निषिद्धम् इति आसीत्, अधुना च प्रशासनं ताम दृष्टिं परिवर्त्य निषेध पर्यन्तम् अनुमतम् इति दिशि अग्रेसरति। भारतस्य अध्यक्षतायाम् आयोजितं ब्रिक्स पर्यटन मंत्रिणाम उपवेशनम ह्यः जयपुर घोषणापत्रम सर्वसम्मत्या स्वीकरणेन सम्पन्नम्। एतद् घोषणापत्रम ब्रिक्स सदस्य देशानां मध्ये पर्यटन क्षेत्रे सहयोगं सुदृढीकर्तुं कार्ययोजना प्रददाति। घोषणापत्रे सहयोगस्य प्रमुख क्षेत्राणि निर्दिष्टानि सन्ति। एतेषु पर्यटन क्षेत्रे कृत्रिम बुद्धेः उपयोगः, स्थायी पर्यटन पद्धतयः, कौशल विकासः, अबाधित यात्रायाः सौविध्यानि च सम्मिलितानि सन्ति। उपवेशनस्य अध्यक्षतां केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः राजस्थानस्य जयपुरे अकरोत्। अनेन सहैव अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायाम् आयोजितस्य ब्रिक्स पर्यटन कार्यसमूहस्य अपि समापनम् अभवत्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः पुनरुक्तवान् यत् अवैध प्रवासिनां विरुद्धं शून्य सहिष्णुता नीतिः निरन्तरं प्रवर्तिष्यते, तथा अवैध प्रवासी नाम परिचय निष्कासन निर्वासन

0: बद्धा प्रक्रिया कठोरतया क्रियान्विता भविष्यति। असौ उक्तवान् यत् देशात् प्रत्येकस्य अवैध प्रवासिनः निर्वासनं प्रति प्रशासनस्य प्रतिबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् जनसांख्यिकीय परिवर्तनं पूर्णतया निरोद्धुं प्रयत्नः करिष्यते। गृहमन्त्री ह्यः पश्चिमबंगालस्य सिलीगुड़ी नगरे कावाखाली प्रांगणे भारतीय न्याय संहितायाः विषये षड् दिवसीय अवबोधन प्रदर्शनीम् उद्घाट्य एकां सभां सम्बोधयन् एतत् उक्तवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः आगामी मासस्य पञ्चमदिनांके नवदिल्ल्यां स्थिते विज्ञान भवने अष्टचत्वारिंशत् विद्यालयीय शिक्षकेभ्यः राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कारान् प्रदास्यति। शिक्षा मन्त्रालयेन संसूचितं यत् विद्यालयीय शिक्षकाणां चयनं जनपदस्तरे, राज्यस्तरे तथा राष्ट्रियस्तरे विद्यालय शिक्षा साक्षरता विभागेन त्रिचरणात्मक चयन प्रक्रियया कृतम्। चयनिता अष्टचत्वारिंशत् शिक्षका सप्तविंशति राज्येभ्य सप्त केन्द्रशासित प्रदेशेभ्य अथ केन्द्र प्रशासनस्य षड् संस्थाभ्य च सन्ति। चयनितेष् अष्टचत्वारिंशत् शिक्षकेष् षड्विंशति पुरुषा द्वाविंशति च महिला सन्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य पूर्व मध्य प्रदेशे प्रचण्डात् अति प्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। असम सिक्किम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा राज्येषु सोमवासर पर्यन्तं प्रचण्ड वृष्टेः संभावना वर्तते। अद्य दिल्ली पंजाब हरियाणा बिहार छत्तीसगढ़ पूर्वोत्तर प्रदेश ओडिशा उत्तराखण्ड हिमालयीय प्रदेशानां केषुचित् भागेषु अपि समान स्थितेः संभावना वर्तते इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

नमस्कारम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग बनारस, क्या हाल चाल है? मस्त, जबरदस्त और चकाचकना। हाँ जी, मैं भी आपकी दोस्त और होस्ट शुचि बिल्कुल मस्त, जबरदस्त और चकाचक है। दोस्तों, आज है वीकेंड का दिन, सुबह थोड़ी आराम वाली, चाय थोड़ी गर्म वाली और मूड एकदम बनारसी होना चाहिए। वैसे दोस्तों, बनारस की सुबह ना बहुत ही खास होती है। कहीं गंगा की लहरें अपनी धुन में हैं, कहीं मंदिरों की घंटियां सुबह का राग छेड़ रही हैं और कहीं कोई चाय की गर्मा गर्म चुस्की के साथ कह रहा है, अरे गुरु आज तो वीकेंड है, तनी धीरे चलना। तो इसी सुहानी सुबह में इसी बनारसी अंदाज के साथ मैं आपकी आज की मॉर्निंग साथी शुचि लेकर हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम नंबर वन मॉर्निंग शो, द वन एंड ओनली गुड मॉर्निंग बनारस। तो फटाफट से अपने रेडियो और मोबाइल सेट का वॉल्यूम कर लीजिए फुल और बन जाइए कुछ पल के लिए हमारे साथ अपने नंबर वन मॉर्निंग शो द वन एंड ओनली गुड मॉर्निंग बनारस में। और दोस्तों, ये है बनारस की सुबह। तो बनारस की सुबह आप सब तो जानते ही होंगे कि बिना महादेव के उद्घोष के साथ शुरू नहीं होती है। तो लगाइए हर हर महादेव का उद्घोष हमारे साथ और बनाइए अपनी सुबह को एकदम एनर्जेटिक और पॉजिटिव।

हाँ जी दोस्तों, महादेव के इस जय घोष के साथ तो निश्चित ही आपकी सुबह बहुत ही खूबसूरत बन गई होगी और आज का दिन भी आपका सबसे बढ़िया जाने वाला है। लेकिन आपके आज के दिन को और भी बढ़िया बनाने के लिए हमारे पास है कुछ और भी खास। जी हाँ, खास ये है कि आजकल हम आपको गुड मॉर्निंग बनारस में सैर करा रहे हैं अपने काशी के घाटों की। और आज हम काशी के उस घाट पर जा पहुंचे हैं जहां हर कदम पर एक कहानी मिलती है। जी हाँ, तो आइए रेडियो के इस सफर में आज कदम बढ़ाते हैं केदार घाट की ओर, जहां

आस्था की धुन गंगा की लहरों के साथ मिलकर कुछ ऐसा राग छेड़ती है जिसे महसूस करने के लिए मन को थोड़ा सुकून देना पड़ता है, थोड़ा शांत करना पड़ता है। तो चलिए आंखें बंद कीजिए, बनारस की सुबह को महसूस कीजिए और मेरे साथ चल पड़िए केदार घाट की सैर पर।

केदार घाट काशी के प्रसिद्ध घाटों में से एक है। इस घाट का अपना एक अलग ही ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व है। ये घाट विजयनगरम घाट के उत्तर में स्थित है। इस घाट का निर्माण 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुमार स्वामी ने कराया था। इस घाट पर केदारेश्वर महादेव मंदिर, कुमार स्वामी मठ, गौरी कुंड तथा हरम पाप तीर्थ भी स्थित है। इसके अतिरिक्त इसी घाट पर तारकेश्वर और भैरव के मंदिर भी स्थापित है। केदार घाट का वर्णन गीवाण पदमंजरी में प्राप्त होता है। ये घाट स्नान दान एवं दर्शनार्थियों के लिए विशेष महत्व रखता है। यहाँ स्थित कुंड एवं तीर्थ में दैनिक स्नानार्थियों के साथ ही पर्व विशेष पर स्नान करने वालों की संख्या अधिक होती है। श्रावण महीने में इस घाट पर स्नान दान एवं केदारेश्वर महादेव के दर्शन का सर्वाधिक महात्म्य वर्णित है। केदार घाट पर स्थित केदारेश्वर मंदिर काशी के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में माना जाता है, जिसका संदर्भ मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, काशी खंड एवं ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता भी है कि इस घाट पर स्नान दान के पश्चात गौरी केदारेश्वर का दर्शन करने मात्र से ही भक्तों के संपूर्ण कष्ट समाप्त हो जाते हैं, और साथ ही ये भी मान्यता है कि यहाँ प्राण त्यागने से व्यक्ति को भैरवी यातना से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, केदार घाट की इस सैर को यहीं विराम देते हैं, जहाँ गंगा की लहरों ने मन को छुआ, मंदिर की घंटियों ने सुबह को सुरों से सजाया और बनारस की गलियों ने फिर याद दिलाया कि यहाँ हर मोड़ पर एक कहानी है। और दोस्तों, केदार घाट की इस खूबसूरत सैर में बस इतना ही कहेंगे कि बनारस को देखने के लिए आंखें नहीं, दिल भी चाहिए, क्योंकि काशी में घाट सिर्फ किनारे नहीं होते, ये तो जीवन को महसूस करने की जगह होते हैं। हे बनारस, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। और दोस्तों, हमारी आपकी बातें तो यूं ही चलती रहेंगे, लेकिन बातों के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। तो सुनिए ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक, मगर आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ अपने पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस में, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी।

वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। और अब दोस्तों समय हो गया है, ए इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के बाद अब समय हो गया है आज के दिन और तारीख में आज के देश और दुनिया का समाचार जानने का। तो दोस्तों चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं क्या हो रहा है अपने देश, दुनिया और शहर बनारस में खास। एक हजार चार आवासीय प्लॉट के साथ आकार ले रही वाराणसी की पहली गेटेड सिटी आनंद काशी। ग्रुप हाउसिंग और व्यावसायिक भूखंड की भी यहां सुविधा प्राप्त होगी। 24 मीटर चौड़ी सड़क भी बनाई जाएगी। जी हां दोस्तों, वाराणसी विकास प्राधिकरण की पहली समेकित गेटेड सिटी आनंद काशी आवासीय योजना फेज वन कल्लीपुर क्षेत्र में आकार ले रही है। करीब 4.56 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित की जा रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना में आधुनिक नगरीय सुविधाओं के साथ पर्यावरण संरक्षण और काशी की सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए आवासीय विकास की योजना तैयार की गई है। योजना के प्रथम चरण में कुल 1004 आवासीय भूखंड विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा 3 ग्रुप हाउसिंग भूखंड, 108 व्यावसायिक भूखंड, 1 शैक्षणिक भूखंड, 1 हेल्थ केयर भूखंड, 1 कम्युनिटी सेंटर और 2 यूटिलिटी भूखंड प्रस्तावित है। योजना में 18 हरित क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे। आवासीय प्लाट 72, 162, 200 और 288 वर्ग मीटर की 4 श्रेणियों में होंगे। आवागमन को सुगम बनाने के लिए टाउनशिप में 24, 18, 12 और 9 मीटर चौड़ी सड़कों का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही जलापूर्ति, सीवरेज, विद्युत व्यवस्था, वर्षा जल निकासी समेत अन्य जरूरी आधारभूत सुविधाओं का विकास विभिन्न चरणों में चल रहा है। योजनाओं का प्रमुख आकर्षण करीब 2 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होने वाले केंद्रीय पार्क होंगे। पार्क में नटराज की प्रतिमा और जल फव्वारे से सुसज्जित केंद्रीय प्लाजा के अलावा ओपन लॉन, एम्फी थिएटर, बच्चों के लिए प्ले एरिया, मेडिटेशन गार्डन, वरिष्ठ नागरिक जोन, फ्लावर गार्डन, जॉगिंग ट्रैक और पैदल पथ जैसी सुविधाएं प्रस्तावित हैं। पार्क के आसपास पैदल अनुकूल मार्केट प्लाजा और व्यावसायिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। टाउनशिप में 4 प्रमुख पैदल प्रवेश द्वार भी प्रस्तावित हैं। पितृकुंड वार्ड में पहुंचा 75 दिवसीय वार्ड प्रवास अभियान, विधायक ने सुनी लोगों की समस्याएं। जी हां दोस्तों, 75 दिवसीय वार्ड प्रवास एवं स्वच्छता अभियान के तहत शुक्रवार को 34वें दिन कार्यक्रम का कारवां पितृकुंड वार्ड 86 पहुंचा। अभियान के दौरान क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लेने के साथ जन समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री डॉ नीलकंठ तिवारी ने वार्ड के विभिन्न इलाकों का भ्रमण किया। उन्होंने शेख सलीम फाटक, हंकार टोला, काली महल, तुलसी कुआं और

लंगह पुरा समेत आसपास की गलियों में पहुंचकर स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान लोगों ने सड़क सफाई, पेयजल और अन्य स्थानीय समस्याओं की जानकारी दी। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर सामने आई छोटी छोटी समस्याओं का तत्काल समाधान कराने के निर्देश भी दिए। वाराणसी में 24,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 125 परियोजनाएं शुरू की गई। जी हां दोस्तों, जिले में औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में सकारात्मक प्रगति सामने आई है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बंधु एवं जनपदीय MOU क्रियान्वयन इकाई की समीक्षा बैठक हुई। इसमें निवेश प्रस्ताव, परियोजनाओं की प्रगति और निवेशकों से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा की गई। DM ने अधिकारियों को निवेशकों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। वाराणसी में रोपे जाएंगे 25,000 पौधे, महापौर ने बरेका में लगाए 101 पौधे। जी हां दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण और काशी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से नगर निगम ने इस मानसून व्यापक पौधरोपण अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित नगर निगम ने इस वर्ष शहर में 25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभियान के तहत महापौर अशोक कुमार तिवारी ने बनारस रेल इंजन कारखाना परिसर में विभिन्न प्रजातियों के 101 पौधे रोपकर अभियान की शुरुआत की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के सेवर्त क्लब की ओर से संस्थान परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। सर सुंदर लाल चिकित्सालय BHU के ब्लड बैंक के सहयोग से हुए इस शिविर में विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोधार्थियों और कर्मचारियों ने स्वैच्छिक रक्तदान में भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता बढ़ाने के साथ लोगों को नियमित रक्तदान के लिए प्रेरित करना है। वाराणसी में बाढ़ प्रभावित गांवों में 413 पशुओं का टीकाकरण किया गया है। 500 पशुओं को बांटी गई कीड़े की दवा। जी हां दोस्तों, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मुस्तफाबाद और चांदपुर में पशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सा विभाग की ओर से शिविर लगाया गया। शिविर में 413 पशुओं को खुरपका, मुंहपका रोग से बचाव का टीका लगाया गया। इसके साथ ही पशुपालकों को पशुओं के स्वास्थ्य और बीमारियों से बचाव की जानकारी भी दी गई। तो ये था देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। और आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं आज के दिन यानी 22 अगस्त में क्या है खास। सन 1639 में आज ही के दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की स्थापना की थी। सन 1851 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया में सोने की खानों के इलाके की खोज हुई थी। सन 1894 में आज ही के दिन नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा 22 अगस्त को की गई थी। सन 1979 में आज ही के दिन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा भंग की थी। और बात करें आज के जन्मे व्यक्तित्व की तो सन 1924 में हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त सन 1922 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। ये हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी व्यंग रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के सामने खड़ा करती है जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना लगभग असंभव है। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को हरिशंकर परसाई ने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया। उनकी भाषा शैली में एक खास प्रकार का अपनापन नजर आता है। 10 अगस्त सन 1995 में जबलपुर में इनका निधन हो गया। आज उनकी जन्म जयंती पर उन्हें शत शत नमन है। तो ये थी इतिहास में आज के दिन की खास बातें। और दोस्तों, अब समय हो गया है आप सबसे फिर मिलने के वादे के साथ टाटा बाय बाय करने का। जल्द ही मिलेंगे फिर और किसी घाट की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त शुचि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: Business.
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 7:18 हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वे खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान की कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित। टूरिज्म एक्सपो जापान 2026 में हिस्सा लेगा उत्तर प्रदेश। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रदेश का दौरा करेगी जापान की टीम। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर किया 1 वर्ष। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, कई जिलों में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा गंगा और घाघरा नदी का जलस्तर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जापान के पास इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस की एक असाधारण विरासत है और प्रदेश के पास अपने युवाओं की एक ऊर्जावान पीढ़ी है जो सीखने, सृजन करने और नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के युवा ऐसी स्किल और वर्क कल्चर सीखें जिसकी डिमांड टोक्यो सहित दुनिया भर में हो।
3: हमारी पार्टनरशिप की सफलता केवल बिलियंस ऑफ रुपीज के इन्वेस्टमेंट से नहीं नापी जाएगी, इसकी अगली सफलता मिलियंस ऑफ जॉब्स होगी, न्यू टेक्नोलॉजीज होगी, ग्लोबल प्रोडक्ट्स और आने वाली पीढ़ियों के लिए शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में दिखाई देगी। हमारा लक्ष्य है यूपी में बने प्रोडक्ट जापान सहित पूरी दुनिया के ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाए।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश आज एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट से लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। उन्होंने जापान की कंपनियों को यहां निवेश करने और बिजनेस स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। श्री योगी ने बताया कि इन्वेस्ट यूपी में एक डेडिकेटेड यामानाशी डेस्क स्थापित किया जाएगा जो यामानाशी सरकार और वहां के उद्योगों और निवेशकों के साथ निरंतर समन्वय करेगा। इससे पहले यूपी जापान हेल्थ केयर एंड केयर इकोनॉमी पार्टनरशिप के सेक्टोरल सेशन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जापान और भारत की क्षमताओं को जोड़कर हेल्थ केयर और केयर इकोनॉमी में एक बड़ा मॉडल तैयार किया जा सकता है। वहीं यामानाशी प्रीफेक्चरल असेंबली ऑफ जापान और उत्तर प्रदेश विधानसभा के बीच मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान के लिए MOU भी हुआ। इसके तहत दोनों विधानसभाओं के बीच म्यूचुअल विजिट्स, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज और एक्सचेंज एक्टिविटीज को प्रोत्साहित

0: हित किया जाएगा। साथ ही दोनों अपनी कार्यप्रणाली, प्रक्रियाओं और अनुभवों को साझा करेंगे। भारत में जापान के राजदूत ओनो केजी ने कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की सेमीकंडक्टर कमेटी की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के शामिल होने की संभावना पर भी चर्चा हुई। श्री केजी ने जापान की ओर से सेमीकंडक्टर सेक्टर में मौकों का पता लगाने के लिए प्रदेश में एक टीम भेजने की इच्छा जताई। वहीं श्री योगी ने कहा कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के इस अहम क्षेत्र में जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और राज्य की औद्योगिक क्षमताओं के बीच सहयोग की काफी संभावना है। साथ ही जापान के अनुरोध पर सितंबर माह में होने वाले टूरिज्म एक्सपो जापान 2026 में प्रदेश के शामिल होने पर भी सहमति बनी। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर विशेष कार्यक्रम अ डायलॉग विद द फ्यूचर आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी की मौजूदगी में जापान के यामानाशी प्रांत से आए 13 विद्यार्थियों और उनके फैकल्टी सदस्यों ने लखनऊ के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल विद्यार्थियों का मिलन नहीं बल्कि दो संस्कृतियों, परंपराओं और देशों की युवा पीढ़ियों का मिलन है। उत्तर प्रदेश जापान निवेश बैठक के सिलसिले में इस समय जापान के उद्योग जगत के 200 से अधिक प्रतिनिधियों का दल प्रदेश की यात्रा पर आया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं।
1: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। एक रिपोर्ट।
2: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में परिचालकों के लिए अब सीधी भर्ती होगी। 4 साल बाद निगम ने आउटसोर्स से भर्ती की प्रक्रिया बंद कर दी है। अब निगम 4,000 से अधिक परिचालकों की जल्दी ही भर्ती शुरू करेगा। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में सावन माह में कल तक 53,69,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि सावन खत्म होने तक ये संख्या करीब 80 लाख तक पहुंच सकती है।
3: 5.5 लाख का एवरेज हमारे पास सोमवार का है। 19 दिनों में 53,69,634 लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और अभी जो बचे हुए 9 हैं उनको मिलाकर आंकड़ा लगभग 80 लाख के आसपास पहुंचेगा, ऐसा हमारा आंकलन है। और यही आंकलन शुरू में रद्द भी किया गया था। श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो मानक संचालन प्रक्रिया है SOP जो हमारा बनाया गया है उसी के अंतर्गत एंड टू एंड बैरिकेडिंग, खोया पाया केंद्र, मेडिकल हेल्प काउंटर इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं।
0: उधर प्रदेश

के विभिन्न शिव मंदिरों और शिवालयों में भी कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन का सिलसिला जारी है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में अगले 6 दिनों तक कई स्थानों पर बारिश और गरज चमक का दौर जारी रहने की संभावना है। उधर बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और बलिया में गंगा नदी तथा बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं फर्रुखाबाद में गंगा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी भी उफान पर है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जापान की कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित। टूरिज्म एक्सपो जापान 2026 में हिस्सा लेगा उत्तर प्रदेश। सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रदेश का दौरा करेगी जापान की टीम। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर किया 1 वर्ष। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। कई जिलों में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा गंगा और घाघरा नदी का जलस्तर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए ध्रुपद गायन। कलाकार हैं आशीष कुमार जायसवाल, राग है मियां की तोड़ी। आपके साथ संगत की है पखावज पर अंकित पारिख ने।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में ध्रुपद गायन। कलाकार थे आशीष कुमार जायसवाल। राग था मियाँ की तोड़ी। आपके साथ संगत की थी पखावज पर अंकित पारिक ने। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से। और एम्स्टर्डम में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
2: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
2: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की, सप्त शक्तियों की बात की है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को

0: 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर अपना वादा पूरा किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्यसमूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने वाली संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल सम्पन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
3: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशन को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे, क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट की विजिट तक सीमित नहीं, अभी तो हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हम उनको अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
0: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपये से बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं विशेष रूप से जेन ज़ी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को

0: बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शू शान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमस्टरडैम में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में आज गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.ue.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े, केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिंदुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। लद्दाख में ग्रेविटी आधारित डायवर्जन से ग्लेशियर का पानी इगुफे सिंचाई नहर की ओर मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की योजना दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, 9 करोड़ लीटर पानी अब भारत को सींचेगा। यमन के पास समुद्री लुटेरों द्वारा 2 जहाजों को अगवा किए जाने के

0: खबर भी अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है 22 भारतीय नाविकों को बंधक बनाया, विदेश मंत्रालय ने कहा सभी भारतीय सुरक्षित। सिविल जज भर्ती योग्यता नियमों में बदलाव की खबर दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है 1 साल की वकालत पर अब बन सकेंगे जज। राजस्थान पत्रिका ने विदेश कारोबार में मोदी सरकार का बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है, अब डॉलर ही नहीं रुपए में भुगतान ले सकेंगे निर्यातक। पत्र लिखता है इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में खाली सरकारी मकानों को किराए के घर में बदलने की योजना नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says reforms are not compulsion but a commitment and conviction for government, asserts its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Home Minister Amit Shah hails West Bengal government for handing over 1,129 acres of land to BSF and SSB for India-Bangladesh border fencing within 45 days of coming to power. India and Nepal reaffirm commitment to strengthen bilateral cooperation in border management and security. BRICS tourism ministers adopt Jaipur Declaration, focusing on sustainable tourism, AI integration and seamless travel. Indian women's doubles pair of Treza Jolly and Gayatri Gopichand to take on top seed Chinese duo in semi-finals of BWF World Championships in Delhi. And in Hockey World Cup, Indian men's team to begin their second stage campaign against hosts Netherlands at Amstelveen this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that reforms are not a compulsion but a commitment and conviction for his government, and that its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi last evening, Mr. Modi said his government has created a clear roadmap for reforms, with the primary focus being on reforms at the governance level. He said India is undertaking next generation reforms at the policy level to secure the country's future.
3: हमने reforms को लेकर एक clear roadmap बनाया। इस roadmap की प्रमुख दिशा रही है governance level के reforms हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ regulation नहीं बदल रहे हैं, हम रेगुलेशन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं।
2: The Prime Minister pointed out that his government is not merely changing regulations, but is changing the entire philosophy behind them. He said that earlier, the approach to regulations was prohibited unless permitted. Mr. Modi said the license raj under earlier governments contributed to unemployment, while his government's production-linked incentive model is creating new opportunities. The Prime Minister also spoke about the global economic environment, saying the weaponization of resources and growing mistrust were creating new challenges. He said that even in such circumstances, the world continues to see India as a bright spot of hope and growth.
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों, रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: Union Home Minister Amit Shah has lauded West

0: manufacturing presence in India, reports Financial Express. And finally, all the dailies have covered the news of passing away of veteran actress Saukar Janki, the versatile face of southern cinema at the age of 94. She started as a drama artist in All India Radio and went on to captivate viewers in Tamil, Telugu and Kannada films. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says reforms are not compulsion but a commitment and conviction for government, asserts its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Home Minister Amit Shah hails West Bengal government for handing over 1,129 acres of land to BSF and SSB for India-Bangladesh border fencing within 45 days of coming to power. India and Nepal reaffirm commitment to strengthen bilateral cooperation in border management and security. BRICS tourism ministers adopt Jaipur declaration, focusing on sustainable tourism, AI integration and seamless travel. Indian women's doubles pair of Treza Jolly and Gayatri Gopichand to take on top seed Chinese duo in semi-finals of BWF World Championships in Delhi. And in Hockey World Cup, Indian men's team to begin their second stage campaign against host Netherlands at Amstel Wynn this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्लाहात मजबूरी नहीं है बल्कि हुकूमत के लिए एक अज़्म और यकीन है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हुकूमत की पॉलिसियां अवाम के मुआफिक और तरक्की पसंदाना हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल सरकार की इस बात के लिए तारीफ की है कि नई सरकार ने इख्तदार में आने के 45 दिन के अंदर भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाकर बीएसएफ और एसएसबी को 1129 एकड़ जमीन हवाले की। भारत और नेपाल ने सरहदी इंतजाम और सिक्योरिटी में बाहमी तआवुन को मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया है। ब्रिक्स के सियाहत के वज़रा ने पायदार सियाहत, मस्नूई जहानत को हम आहंग करने और बिला रुकावट सफर पर तवज्जो देते हुए जयपुर एलामिया मंजूर किया है। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ आलमी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारत की जोड़ी चीन की जोड़ी से मुकाबला करेगी। और हॉकी आलमी कप में आज शाम नीदरलैंड के एम्स्टेलवीन के मकाम पर भारत की मर्दों की टीम अपने दूसरे मरहले के मैच में मेजबान नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्लाहात मजबूरी नहीं है बल्कि हुकूमत के लिए एक अज़्म और यकीन है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उसकी पॉलिसियां अवाम के मुआफिक और तरक्की पसंदाना हैं। कल शाम नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने सरकारी एतबार से इस्लाहात पर खसूसी तवज्जो देते हुए इस्लाहात के सिलसिले में एक वाज़ह खाका तैयार किया है। उन्होंने कहा कि भारत मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए पॉलिसी सतह पर नए दौर की इस्लाहात कर रहा है।
3: हमने रिफॉर्म्स को लेकर एक क्लियर रोडमैप बनाया। इस रोडमैप की प्रमुख दिशा रही है गवर्नेंस लेवल के रिफॉर्म्स हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे, हम रेगुलेशन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं।
2: वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े किया कि उनकी हुकूमत महज ज़ाब्ते तब्दील नहीं कर रही है बल्कि वो ज़ाब्तों की पूरी पॉलिसी ही तब्दील कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि साबिका हुकूमतों के दौर में लाइसेंस राज ने बेरोजगारी में इजाफा किया था जबकि उनकी हुकूमत के पैदावार से जुड़े तरगीबी मॉडल नए मौके पैदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी इक्तसादी माहौलियात के बारे में भी बात की और कहा कि वसाइल को आलायकार बनाना और बढ़ती हुई बदगुमानियां नए चैलेंजेस पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात में भी भारत को पूरी दुनिया में तरक्की के एक दरख्शां मकाम के तौर पर देखा जा रहा है।
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों. रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा. लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ

0: और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: जनाब मोदी ने कहा कि बैन अलावामी मालियाती फंड ने पेशगोई की है कि भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई बड़ी मईशत रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे इकदाम कर रहा है जो उसकी तरक्की को नई जहत दे रहे हैं। मुल्क की सतह पर इस्तेहकाम के गहरे आलमी असरात को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने इस बात पर जबरदस्त एतमाद का इजहार किया कि मुल्क की तरक्की के सफर को महफूज बनाकर बैन अलावामी बिरादरी के लिए फितरी तौर पर ज्यादा इस्तेहकाम लाया जा सकेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी की इस बात के लिए तारीफ की है कि नई सरकार ने इख्तदार में आने के 45 दिन के अंदर रियासत में भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के बाद 1,129 एकड़ जमीन बीएसएफ और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के हवाले की है। उन्होंने कहा कि सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए जमीन की दरख्वास्त 2014 से जेरे इल्तवा थी। जनाब शाह कल मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में रानी दंगा इलाके में सशस्त्र सीमा बल फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स में एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर दाखिला ने कहा कि खारदार तार लगाने के काम को मुकम्मल करना जरूरी है ताकि दरअंदाजी को रोका जा सके और कौमी सलामती का तहफ्फुज किया जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत की गैर कानूनी इमिग्रेशन के तई कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी जारी रहेगी।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। तो तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
1: ब्रिक्स की सियाहत के बुजरा की मीटिंग जो भारत की सदारत में मुनाकिद हुई थी कल खत्म हो गई। इसमें जयपुर ऐलामिये को मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दी गई जिसमें ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के दरमियान सियाहत के शोबे में तावुन को मुस्तहकम करने के लिए एक फ्रेमवर्क की गुंजाइश फराहम की गई है। ऐलामिये में सियाहत में मसनूई जहानत के इस्तेमाल, पायदार सियाहत के तौर तरीकों, हुनरमंदी की तरक्की और बिला रुकावट सफर की सहूलत फराहम की गई है। मीटिंग की सदारत राजस्थान के जयपुर में सकाफत और सियाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने की और 2026 में भारत की सदारत में ब्रिक्स टूरिज्म ट्रैक इख्तिताम पजीर हुआ। टूरिज्म ट्रैक का मौजू साबित कदमी, इख्तिरा और पायदारी था और इस मौजू को आगे ले जाया गया। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि सियाहत 2047 तक विकसित भारत के लिए भारत के सफर में एक अहम रोल अदा करेगी और भारत के पास इतनी सलाहियत है कि वो माशी तरक्की को बड़े शहरी मराकज से कस्बों, गांवों और दूरदराज के खित्तों तक लेकर जा सके। ब्रिक्स के सियाहत के वुजरा के ऐलामिया 2026 को जयपुर ऐलामिया के तौर पर भी माना जाता है जो भारत की सदारत के तहत ब्रिक्स सियाहत वर्किंग ग्रुप के जरिए किए गए काम की अक्कासी करता है और चार अहम तरजीहात पर तवज्जो देता है जिनमें मसनूई जहानत और सियाहत, पायदारी और जिम्मेदाराना सियाहत, सियाहत हुनरमंदी, सलाहियत साजी और सियाहत के तबादले और बिला रुकावट सफर की सहूलियात शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के नौजवानों के उमूर के वुजरा की मीटिंग और ब्रिक्स के खेलों के वुजरा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स के नौजवानों के उमूर के वुजरा की मीटिंग आज होगी जबकि खेलों के वुजरा की मीटिंग कल होगी। इन मीटिंगों की सदारत नौजवानों के उमूर के वुजरा और खेलों के वुजरा डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। नौजवानों की उमूर और खेलों की वजीर मुमलिकत रक्षा खट्टे भी इन मीटिंगों में शिरकत करेंगी। नौजवानों की उमूर और खेलों की वजारत के मुताबिक नौजवानों की उमूर के वुजरा की मीटिंग में तालीम, हुनरमंदी का फरोग, सनतकारी, फलाओ बहबूद और पायदार तरक्की के साथ नौजवानों की तरक्की और तफवीज इख्तियारात में तावुन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू अगले माह की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली असातजा को नेशनल टीचर्स अवार्ड अता करेंगी। वजारत तालीम के मुताबिक अवार्ड के लिए स्कूल के टीचर्स को स्कूली तालीम और खानगी के महकमे के जरिए जिला, रियासत और कौमी सतह पर 3 मरहलों पर मुश्तमिल इंतखाबी अमल के जरिए मुंतखब किया गया है। ये 48 स्कूली टीचर्स 27 रियासतों, 7 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और मरकजी हुकूमत की 6 तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। इनमें 26 मर्द और 22 खवातीन टीचर्स शामिल हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।

कार्यक्रम मधुरिमा के सभी श्रोताओं को मेरा यानी आपके दोस्त शैलेश दुबे का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, वो लम्हा कितना खूबसूरत होता है जब हम खुद को खोकर किसी का साथ ता उम्र के लिए पा लेते हैं।

दोस्तों, वैसे तो हर किसी के पास कुछ न कुछ जिंदगी में होता ही है, लेकिन हम पूरे तब होते हैं जब कोई हमें हमसे भी ज्यादा

दोस्तों, प्यार का ये खूबसूरत एहसास हमें तब मुकम्मल करता है जब हमारी इस बेपरवाह सी आदतों को कोई अपनी पूरी उम्र देने के लिए राजी हो जाता है और हमें अपना खास होने का एहसास भी कराता है।

दोस्तों, जिंदगी का वो लम्हा जब एक अजनबी अब अजनबी नहीं रह जाता, बल्कि हमारा खुदा बनकर हमारी हर रोज की इबादत बन जाता है और बन जाता है हमारे होने की वजह।

0: Madhurima, the sound of melody.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा. हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं.
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है. जिले की हलचल आज सुनिए गाजियाबाद और रामपुर जिलों की हलचल. पहले सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल. आलेख और स्वर है मनोज शर्मा का.
3: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गाजियाबाद कमिश्नरेट के 36 अधिकारी और कर्मचारियों को विभिन्न पदक और सम्मान चिन्हों से सम्मानित किया गया है. पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त जे रविंदर गौड़ ने पुलिस कर्मियों को पदक प्रदान किए और उनके उत्कृष्ट कार्य की सराहना की. विजयनगर थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मपाल सिंह को राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा पदक और पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह स्वर्ण मिला. कौशाम्बी थाना प्रभारी अजय कुमार शर्मा समेत कई पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया. गृह मंत्रालय के अति उत्कृष्ट सेवा पदक से मुख्य आरक्षी विक्रम सिंह गिरी और संतराम सम्मानित हुए. वहीं कई पुलिस कर्मियों को गृह मंत्रालय का उत्कृष्ट सेवा पदक मिला. वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक पाने वालों में मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल समेत अग्निशमन विभाग के 10 अधिकारी कर्मचारी और सर्विस लांस सेल के मुख्य आरक्षी आदेश त्रिपाठी शामिल रहे. कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त ने सभी को सम्मानित पुलिस कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि उनके समर्पण और कर्तव्य निष्ठा से विभाग का गौरव बढ़ा है. गाजियाबाद में भोजपुर थाना अंतर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में पनीर में मिलावट का बड़ा मामला सामने आया है. खाद्य विभाग की टीम ने 3 पनीर फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की. जांच के दौरान पनीर को सफेद और वजनदार बनाने के लिए कपड़े धोने में इस्तेमाल होने वाला व्हाइटनर, पामोलिन ऑयल, दूध पाउडर और अन्य हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल का खुलासा हुआ. टीम ने तीनों फैक्ट्रियों से 868 किलो पनीर और 170 किलो खोया मौके पर ही नष्ट कराया. इसके अलावा केमिकल समेत 20 नमूने जांच के लिए लखनऊ की लैब में भेजे गए हैं. सहायक आयुक्त खाद्य सुरेश कुमार मिश्रा के मुताबिक फैक्ट्री संचालकों में कलवा, शकील और कफील के खिलाफ भोजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है.
4: जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीमों का गठन किया गया है. नहली में आपने देखा होगा भोजपुर थाने में भारी मात्रा में नकली पनीर बनाते हुए लोग पकड़े गए थे. उसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ भी जांच. इस परिसर में 2 प्रतिष्ठान है और दोनों टोफू के लिए कृत है. जो कमियां पाई गई है उससे संबंधित जो भी प्रावधान है उसके उल्लंघन के आरोप में जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी.
3: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी हरनंदीपुरम योजना अब धरातल पर उतरने की ओर बढ़ रही है. करीब 500 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होने वाली इस योजना की DPR तैयार हो गई है. योजना में सभी वर्गों के लिए आवास की व्यवस्था होगी. इसमें प्लॉट के साथ गरीबों के लिए 10% EWS और कम आय वर्ग के लोगों के लिए LIG फ्लैट्स भी प्रस्तावित हैं. इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. GDA के उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल के अनुसार अगस्त में होने वाली बोर्ड बैठक की तैयारी पूरी कर ली गई है. पहले चरण में 48 सेक्टर क्षेत्र में योजना शुरू की जाएगी. इसके बाद सितंबर तक रेरा की मंजूरी मिलने पर योजना लॉन्च होने की उम्मीद है. पहले चरण में 2 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं शामिल होंगी. आने वाले चरणों में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी. खास बात यह है कि हरनंदीपुरम में GDA का पहला गोल्फ कोर्स भी प्रस्तावित है. योजना में जमीन की नीलामी सितंबर के बाद शुरू की जाएगी. साथ ही परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के ऊपर भी जोर दिया जाएगा. टाउनशिप को ई बसों के जरिए नमो भारत और मेट्रो से जोड़ने की योजना है. गाजियाबाद में विदेशी संपत्ति, बैंक खातों, निवेश और वास्तविक आय की जानकारी छिपाकर आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले 150 से अधिक करदाता आयकर विभाग की रडार पर हैं. अधिकारियों के मुताबिक जहां जान पूछकर जानकारी छिपाने के प्रमाण मिलेंगे वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी. जानकारों के अनुसार आयकर रिटर्न में विदेशी बैंक खाते, शेयर, अचल संपत्ति और कंपनी में हिस्सेदारी जैसी विदेशी परिसंपत्तियों की जानकारी देना जरूरी है. गलत जानकारी देने या संपत्ति छिपाने पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है. गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर

0: में आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या 22,70,000 से ज्यादा है। इनमें अकेले गाजियाबाद में 19 लाख से अधिक आयकरदाता हैं। वाहनों की कागजी आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की व्यवस्था अब खत्म होने जा रही है। शासन ने पुराने वाहनों के लिए भी स्मार्ट आरसी जारी करने का फैसला किया है। अभी तक स्मार्ट आरसी की सुविधा सिर्फ नए वाहनों के पंजीकरण पर मिल रही थी। एआरटीओ प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक नई स्मार्ट आरसी एटीएम कार्ड के आकार की होगी। पुराने वाहन मालिक अपनी कागजी आरसी को स्मार्ट कार्ड में बदलवा सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग के आधिकारिक वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निर्धारित प्रक्रिया और शुल्क जमा करने के बाद स्मार्ट आरसी डाक के जरिए वाहन मालिक के पंजीकृत पते पर भेजी जाएगी। स्मार्ट आरसी में इलेक्ट्रॉनिक चिप और क्यूआर कोड होगा। इससे वाहन का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, फ्यूल टाइप, मालिक का नाम, पता और बीमा संबंधी जानकारी डिजिटल और सुरक्षित रूप से दर्ज रहेगी।
1: गाजियाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का।
2: रामपुर में राज्य कर्मचारियों के कल्याण के लिए खेलों के विकास एवं शारीरिक संवर्धन के मकसद से सिविल सर्विसेज के जनपद स्तरीय चयन ट्रायल्स आयोजित किए गए। ट्रायल्स शहर स्थित शहीद आजम स्पोर्ट स्टेडियम में आयोजित किए गए। चयन ट्रायल्स चयन समिति के अध्यक्ष एवं मुख्य विकास अधिकारी गुलाब चंद्र के समक्ष संपन्न हुए। शारीरिक दक्षता के तहत 100 मीटर एवं 400 मीटर दौड़, जंप, वॉल थ्रो तथा सिटअप्स आदि स्पर्धाओं में प्रतिभागियों का परीक्षण लिया गया। प्रदेश सरकार द्वारा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने का प्रयास रंग ला रहा है। प्रदेश के 108 आकांक्षात्मक विकास खंडों में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, सामाजिक विकास तथा आधारभूत अवसंरचना जैसे 5 प्रमुख क्षेत्रों में निर्धारित 50 इंडिकेटर्स पर काम किया जा रहा है। इन इंडिकेटर्स के प्रगति की नियमित समीक्षा और रैंकिंग के माध्यम से विकास खंडों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। इसमें जिले के सैदनगर विकास खंड ने आकांक्षात्मक विकास खंडों की जुलाई 2026 की रैंकिंग में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। सैदनगर विकास खंड ने 70.03 अंक के साथ प्रदेश के 108 आकांक्षात्मक विकास खंडों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जिलाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि विभिन्न कार्यक्रमों में स्वास्थ्य एवं पोषण को 30%, शिक्षा को 30%, कृषि एवं संबद्ध सेवाओं को 20%, आधारभूत अवसंरचना को 15% तथा सामाजिक विकास को 5% का भारांक दिया गया। इन पांचों थीम के कुल 50 इंडिकेटर्स के आधार पर विकास खंडों का मूल्यांकन किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में सैदनगर का प्रदर्शन भी प्रदेश में औसत से बेहतर रहा। जिले में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहर स्थित रंग महल परिसर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारत विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विस्थापन, संघर्ष और पीड़ा झेलने वाले परिवारों के त्याग एवं साहस को याद किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि भारत का इतिहास संघर्ष, त्याग और बलिदान की गाथाओं से भरा हुआ है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जनपद में तिरंगा पदयात्रा रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत शहर विधायक आकाश सक्सेना द्वारा अन्य जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में की गई। तिरंगा पदयात्रा में जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। उत्तर प्रदेश सरकार की जन सुनवाई और पारदर्शिता की फ्लैगशिप योजना एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली की ताजा प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में जनपद ने सुशासन का नया कीर्तिमान रचा है। जिला प्रशासन ने 130 में से 124 अंक अर्जित करते हुए पूरे राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। जिले में समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के जरिए 5,100 से अधिक जन शिकायतों का समाधान कर जनता का भरोसा जीता गया। जिले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि एवं कृषि अनुसंधान राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने अन्य जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ गांधी समाधि स्थल पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर राष्ट्रपिता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। अपने संबोधन में राज्य मंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर हम सभी

0: देश के महान वीर एवं अमर बलिदानी सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोटि-कोटि नमन करते हैं। उनके शौर्य, पराक्रम, बलिदान, त्याग, निष्ठा और राष्ट्र प्रेम का इतिहास हमें गौरवान्वित करने के साथ ही देश प्रेम एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रेरित करता है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए कुछ खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना। थाना कोन जिला सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रीति कुमारी पुत्री बैजनाथ चंद्रवंशी निवासी ग्राम असना बांध थाना कोन जिला सोनभद्र। इनका हुलिया कुछ इस प्रकार है। उम्र 18 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, रंग गोरा, इकहरा शरीर और चेहरा गोल है। ये 13 मई सन 2026 से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर आप अपने निकटतम थाने अथवा थाना कोन जिला सोनभद्र को सूचित करें। अगली सूचना है थाना रॉबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र से प्राप्त। राहुल सोनकर पुत्र मिठाईलाल सोनकर निवासी प्रज्ञापुरम कॉलोनी डीएवी स्कूल के पास थाना रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 37 वर्ष, कद 5 फीट 7 इंच, रंग गेहुआ, सामान्य शरीर और चेहरा गोल है। ये 23 दिसंबर सन 2025 से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर आप अपने निकटतम थाने अथवा थाना रॉबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र को सूचित करें। थाना दशाश्वमेध जिला वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार रामराव लिंगम पुत्र उमा माहेश्वर राव लिंगम निवासी ग्राम पलासा श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 58 वर्ष, कद 172 सेंटीमीटर, दोहरा शरीर, रंग सांवला और चेहरा गोल है। ये 14 फरवरी सन 2026 से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर आप अपने निकटतम थाने अथवा थाना दशाश्वमेध जिला वाराणसी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: डीटीएच यानी दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सर्विस, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार, वो भी बिना किसी मासिक शुल्क के, यानी केबल कनेक्शन का झंझट खत्म। दूरदर्शन की डीटीएच सेवा का गुलदस्ता 30 से अधिक लोकप्रिय टीवी चैनल और साथ में विविध भारती सहित आकाशवाणी के 12 चैनल, सिर्फ एक छोटा सा डिश और सेट टॉप बॉक्स आपके लिए खोले सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का नया संसार, जिसके लिए आप देंगे छोटी सी कीमत सिर्फ एक बार। दूरदर्शन की डीटीएच सेवा, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार।

हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। ज्योति वह अमूल्य उपहार है जो आप ही दे सकते हैं। दृष्टि के आनंद को बांटिए, नेत्रदान को अपने परिवार की परंपरा बनाए। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जो हम अपने लखनऊ केंद्र से प्रसारित करेंगे, यानी उर्दू कार्यक्रम।
1: उर्दू प्रोग्राम समीने बज़्म अदब की खिदमत में मेजबान बज़्म रबाब अंजुम का सलाम सुबह पेश है, कबूल करें। समीन, आज उर्दू के जाने माने शायर और कसीदा निगार जनाब इब्राहिम ज़ौक का यौम विलादत है। इस मौके पर आपके लिए पेश है एक खुसूसी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के रामपुर मरकज पर तैयार किया गया है।

22 अगस्त 1790, वो अहम तारीख कि जब पैदाइश हुई उर्दू के एक मशहूर और मारूफ शायर शेख इब्राहिम सौक की, जो फर्जंद थे एक गरीब सिपाही मोहम्मद रमजान की। मकतब के उस्ताद हाफिज गुलाम रसूल के जौक शायरी से जिला पाकर जौक भी शेर कहने लगे। ये वो जमाना था कि जब शाह नसीर देहलवी का तूती बोल रहा था। जौक भी उनके शागिर्द हो गए, लेकिन शाह नसीर ने जौक और उनके कलाम को काबिल तवज्जो नहीं जाना और हमेशा उनके गजलों को ये कह कह कर वापस कर दिया कि कुछ नहीं है, सोच कर कहो। हमेशा उनके दिल शिकनी की नतीजा जौक का हौसला उस्ताद की इस बेतवज्जही से टूटता चला गया। ये वो दौर था जब दिल्ली में मुशायरों का बाजार गर्म था। इसी जमाने में वहां एक बुजुर्ग उस्ताद शायर थे, मीर कल्लू हकीर। उन्होंने एक रोज जब जौक को रंजीदा देखा तो अपने पास बुलाया और सबक पूछा। जौक ने दर्द दिल बयान किया। मीर साहब पुराने उस्ताद थे। उन्होंने जौक की हौसला अफजाई करते हुए कुछ गजलें सुनी और सुनकर कुछ सोचा और फिर कहा, जाओ आज शाम मुशायरा है, जाओ हमारी जिम्मेदारी पर बिला तामुल अपने गजल पढ़ दो। जौक पहले तो घबराए लेकिन फिर हिम्मत की और मुशायरे में अपनी यह गजल पेश कर दी।

और बस फिर इस दिन से ज़ौक जुरतमंदी और हिम्मत से अपनी गजलें मुशायरों में पढ़ने लगे और रफ्ता रफ्ता अपनी मेहनत और लगन से ऐसे शायराना अजमत हासिल की कि सिर्फ इल्मी और अदबी हलकों में ही इनका चर्चा नहीं हुआ बल्कि इस तरह इनकी रसायत कलाए मौला तक हो गई और फिर कले के अंदर और बाहर हर जगह जौक की शोहरत का डंका बजने लगा। यहां तक कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उनको अपना कलाम बनजर इस्लाह दिखाने लगे। जौक ने किले में दखूल के बाद बेशुमार कसाइद अकबर शाहसानी की शान में कहे। बदले में उनकी जानिब से जौक को खाकानी हिंद के खिताब से नवाजा गया, जिसकी तफसील में आब हयात में मौलाना आजाद लिखते हैं कि जौक ने एक कसीदा अकबर शाह के दरबार में सुनाया, जिसके मुख्तलिफ अशार में अनवाओ अकसाम के सनाए बदाए इस्तेमाल किए गए थे। इसके अलावा एक एक जुबान में एक शेर था और उनकी तादाद 18 थी। अकबर शाह सानी के इंतकाल के बाद जब बहादुर शाह जफर तख्त नशीन हुए तो उन्होंने इब्राहिम जौक को मलिकुश्शुअरा के खिताब से सरफराज फरमाया और शुरू में जौक के लिए 4 रुपए माहाना वजीफा मुकर्रर किया, जिसे बाद में बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया। जौक के तमाम कसाइद अकबर शाह सानी और बहादुर शाह जफर की मदह में है। हां, बस एक कसीदा आशिक निहाल चुश्ती नामी बुजुर्ग की मदह में। जौक के कसाइद की तादाद तकरीबन 30 है। शेख इब्राहिम जौक सिर्फ उर्दू के गजल को या कसीदा गो शायर ही नहीं थे, उन्होंने जुमला असनाफ सुखन कता मुसलस रुबाई मुखम्मस मुसद्दस मसनवी वासोख नज़्म और तारीख वगैरह में भी तवा आजमाई की। इसके अलावा उन्हें अरबी फारसी के अलावा मुतअद्दिद उलूम

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, लेकिन उससे पहले लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कलाकार हैं बाबूलाल यादव और साथी। सबसे पहले लीजिए सुनिए इनके स्वर में ये देवी गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कलाकार थे बाबूलाल यादव और साथी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं फिल्म साथिया में सोनू निगम को। संगीत ए आर रहमान का है और गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने।

दोस्तों, फिल्म सलामी में आप सुन रहे हैं आशा भोसले और कुमार सानू को। गीत मदन पाल का है और संगीत नदीम श्रवण का।

दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं कुमार सानू को फिल्म आशिकी में। गीत समीर का है और संगीत नदीम श्रवण का।

अलका याग्निक और कुमार सानू को आप सुन रहे हैं फिल्म रंग में। गीत समीर का है और संगीत नदीम श्रवण का।

दोस्तों, फिल्म साजन में अभी आप सुन रहे हैं अलका याग्निक और कुमार सानू को। गीत समीर का है और संगीत है नदीम श्रवण का।

सत्य में हो जाते। इस फिल्म में आप सुन रहे थे बप्पी लहरी को। गीत के बोल लिखे थे फारूक कैसर ने और संगीत बप्पी लहरी का ही था।

दोस्तों, उदित नारायण, शबीर कुमार और सारिका की आवाजों में आप सुन रहे हैं फिल्म आन का ये गीत। अनु मलिक का संगीत है और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

दोस्तों अब आइए सुनते हैं फिल्म सैनिक में सुहासिनी गोयंकर की आवाज़। नदीम श्रवण ने संगीत दिया है और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर में अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम सौदागर, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फोन एंड फरमाइश। प्रस्तुति है अरुण पांडे की।

0: इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का।
1: एक्सक्यूज मी,
2: हाँ बोलना।
3: क्यूट है ना?
0: और श्रोताओ, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार।
4: सलाम।
0: आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते रेखा जी, स्वागत है। आज तो आपका फोन शुरुआत में ही लग गया, बहुत बधाई मुबारकबाद। ये किस चीज की महिमा है?
5: जी जी, बहुत पहले से ट्राई कर रहे थे, कभी मतलब लग नहीं रहा था, समय से पहले ट्राई कर रहा हूँ।
0: हाँ, इधर एक आध हफ्ते से थोड़ी सी मशीनें ठीक हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं पेश आ रही है। कैसी हैं और कहाँ पर हैं? बनारस में हैं या फिर मुंबई में हैं?
5: बनारस में।
0: जी जी, और बनारस में भी हालांकि इस बार बारिश अभी के समय में अच्छी हो रही है, जैसी मुंबई में होती है।
5: मुंबई में तो बहुत बारिश हो रही है।
0: हाँ, वहाँ तो 3-4 रोज लगातार बारिश। हालांकि जो इधर हाल में इस हफ्ते बनारस में भी बारिश है वो काफी अच्छी हुई शाम को एक रोज,
5: मगर इधर हम लोग की तरफ बारिश बहुत कम हो रही है।
0: अच्छा, कल शाम को जो यहाँ बारिश हुई 1 घंटे, वो आपके यहाँ नहीं हुई है? 6 बजे
5: हुआ, बहुत कम। मतलब
0: यहाँ तो जबरदस्त बारिश हुई है।
5: पतिदेव भी बोल रहे थे,
0: कहें
5: उधर तो बारिश बहुत हुई।
0: हाँ, इधर इस हफ्ते एक रोज शाम को 6 से 7 तक लगातार बहुत तेज बारिश हुई। और कैसी है, क्या हालचाल है? अब तैयारी किस चीज की है? रक्षाबंधन वगैरह, जन्माष्टमी त्योहार तो आते रहते हैं, सीजन शुरू हो गया है।
5: जी जी, वही 3 दिन त्योहार।
0: हाँ, बनारस में कहते हैं कि 7 बार 9 त्योहार होते हैं यहाँ पर। और तो ये तो है, हालांकि हमारी भारतीय संस्कृति में 30 त्योहारों का बहुत महत्व है और हर अलग अलग इलाके में अलग अलग त्योहार होते हैं।
5: जी जी।
0: प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं, सुन रही हैं आप?
5: नहीं, सुन तो नहीं पा रहे।
0: जी, और ये हेलो फरमाइश से आपका नाता तो बहुत पुराना है।
5: बहुत पुराना है फिलहाल, मतलब और भी प्रोग्राम सुनते हैं, मगर रेडियो पास में नहीं है।
0: जी जी जी, हाँ, एक बार आपने पिछली दफे भी बताया था कि रेडियो कुछ आपका थोड़ा सा वो ठीक नहीं चल रहा है।
5: जी जी, मतलब टेबल पे रखी थी, डाइनिंग टेबल को गिरा एकदम, अलग अलग
0: तो इधर तो अब हैप्पी बर्थडे आएगा तो बच्चे आपको गिफ्ट कर देंगे।
5: नहीं शिवो, मैं तो बात नहीं, वो मतलब अकाउंट में मेरे डाल देता है ना कर दे।
0: क्योंकि आजकल तो अवसर ढूंढते हैं बच्चे के माता पिता या किसी को भी, दोस्त मित्र को क्या देना है, ऐसा कोई मौका आ जाए।
5: एनिवर्सरी रहता है, हम लोग को पता है नहीं, वहाँ से मतलब केक ऑर्डर कर देता है।
0: ऑनलाइन ने बहुत सारी दुनिया बदल दी है।
5: जी जी
0: जी, अब बता दे रेखा जी, कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें?
5: तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ये राहत फतेह अली खान की आवाज है।
0: एक बार आपने गीत सुना था ना?
5: नहीं सुनाया आपने इसे।
0: गीत सुनाते हैं आपको, यानी सुनवाते हैं आपको आपकी फरमाइश का। बहुत शुक्रिया रेखा जी, नमस्कार।
5: नमस्ते पांडे जी।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फोन इन फरमाइश, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: दीपक पटेल बोल रहा हूँ।
0: दीपक जी बहुत स्वागत है, और आजकल आवाज अच्छी आ रही है, ये भी हम शुक्रिया कहें अपने तकनीकी अनुभाग को और साथ ही जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं लाइन के उनको भी। कैसे हैं, क्या हालचाल हैं आपके, और बारिश आपके यहाँ कैसी है?
1: बारिश सर इस समय हो रहा है।
0: इस बार थोड़ी सी जुलाई में बारिश कम हुई, लेकिन अगस्त के महीने में अब बारिश हर जगह अच्छी हो रही है।
1: हाँ सर, अब बारिश अच्छी हो रही है।
0: तो आपका काम क्या है दीपक जी?
1: जी मैं तो सूरत में रहता था, गांव में हूँ।
0: जी जी, आपसे एक बार हमारी बात हुई थी लगता है।
1: कई बार हो गया है सर।
0: हाँ हाँ हाँ, तो सूरत की याद आती है, किस सूरत में?
1: हाँ सर,
0: या जैसे गांव में भी अलग अपना दोस्त मित्र होंगे, और बहुत सारी जो परेशानियां रोजमर्रा की हैं आजीविका की, वो गांव में रहने से नहीं होती हैं।
1: जी नहीं सर,
0: क्योंकि सब कुछ अपना होता है।
1: हाँ सर, आप कैसे हैं सर?
0: हम अच्छे से हैं, और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप हमारे केंद्र के?
1: हाँ सर, मोबाइल पे सुनते हैं।
0: बहुत बढ़िया, आज कौन से गाने की फरमाइश है आपकी?
1: सर बॉर्डर का सुनवा दीजिए सर।
0: तो चलूं, इसीलिए हम चुप थे कि कहीं जैसे ही बॉर्डर का नाम आता है, संदेश आते हैं, लोगों को याद आता है। जावेद अख्तर के बोल, अनु मलिक का संगीत, और रूप कुमार राठौड़ की आवाज है। गीत सुनते हैं, बहुत शुक्रिया।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: प्रणाम सर।
0: जी स्वागत है, नमस्कार आपका कार्यक्रम में।
1: मैं विनोद राय बोल रहा हूँ, बंसी बाजार गाजीपुर से।
0: अच्छा, गाजीपुर से आपका फोन लग गया जल्दी ही। इस बार हमारे साथ आपकी मेरे ख्याल से एक आध हफ्ते बाद दूसरी बार बात हो रही है। जी जी, तो ऐसे गाजीपुर ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे आपकी तरह रिटायर्ड हमारे अवकाश प्राप्त फौजी रहते हैं, तो आपस में मिलते जुलते हैं, कोई क्लब या संगठन जैसा है वहाँ पर?
1: गाजीपुर में तो है, अमर गांव में।
0: जी जी, अच्छा,
1: अमर गांव में है।
0: क्योंकि उस गांव में और फिर आसपास के और भी जो गांव है वहाँ के लोग बहुत सारे हैं जो फौज में रहते हैं, लेकिन अब लोगों ने शहर में मकान बना लिए हैं।
1: अधिकांश लोग शहर में ही हो गए हैं, गाँव में बहुत कम लोग।
0: जी जी जी, तो वही हम पूछ रहे थे, चूंकि आप गाजीपुर शहर में हैं और वहां पर क्या मिलते जुलते हैं, क्योंकि फौज की इतने वर्षों की नौकरी के बाद याद तो आती होगी अक्सर आपको।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: जी
1: बोलने वाली
0: है। हाँ, क्योंकि एक बार जो फौजी हुआ वो जिंदगी भर अपने अनुशासन और रहन सहन और रूटीन के बारे में तो आजीवन फौजी ही रहता है, यानी डिसिप्लिन को लेकर के।
1: आखिरी दम तक सर।
0: जी जी जी, फौज एक अनुशासित है जहां पर जीवन बदल जाता है। तो और कैसे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपको?
1: बहुत अच्छा साहब, समय पास करने के लिए ये रेडियो का ही सहारा है।
0: जी जी जी, तो बहुत बढ़िया। देखिए
1: सुबह से लेकर रात तक
0: बहुत बढ़िया। वही हमने शुरू में पूछा कि कोई ऐसा संगठन है जहां पर आपका समय बीत जाता है, लेकिन घर परिवार है वहां भी व्यस्तताएं रहती होंगी।
1: छोटे छोटे बच्चे नाती पोता आए, अब उन्हीं में समय बिताना है, रेडियो लेके बैठे रहते हैं।
0: बहुत बढ़िया, तो आज इस रेडियो पर कौन सा गीत आपको सुनना है?
1: ये है भावी पिक्चर का है, पुराना, और रफी साहब की आवाज है। चलो उड़ जा रहे पंछी।
0: हाँ, बहुत पुराना, हम लोग बचपन से इस गीत को सुनते आ रहे हैं। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, चित्रगुप्त का संगीत है, चल उड़ जा रे पंछी। और गीत आपको सुनवा रहे हैं, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन।
1: हेलो नमस्कार
0: जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में आपका फोन लगा है। नमस्कार, स्वागत है आपका।
1: मेरा नाम है अमल बसमतारी और मैं रंगापुरा सोनितपुर असम से है।
0: आसाम से बोल रहे हैं और नाम जरा एक बार फिर से बता दीजिए, थोड़ा अलग तरह का नाम है आपका।
1: अमल बसमतारी।
0: अमल बासुमतारी।
1: जी,
0: ये टाइटल तो सुना हुआ है, इस हमें लग रहा है कोई मशहूर इस टाइटल के भी शख्सियत भी हुई है आपके असम में।
1: जी, हमारे जाति को बोडो कहते हैं।
0: जी,
1: हमारा लैंग्वेज मदर लैंग्वेज है बोडो।
0: जी,
1: इसके टाइटल हमारा बसुमतारी।
0: और आप
1: है,
0: हमारे असम से एक और श्रोता है जो लगातार फोन करते हैं, देवोजीत जी।
1: हाँ, ये
0: कछार।
1: श्रीभूमि कछार का है।
0: हाँ, तो आप वहाँ पर क्या करते हैं?
1: मैं सोनितपुर में रहता हूँ और हम तो खेत से जुड़े रहता हूँ, जैसे कि हमारे भैया भाभी जो खेत में जुड़ते हैं, जैसे कि धान का खेत है और चाय का बगान है।
0: क्या कहने। अच्छा, जो चाय बागान यहाँ से लोग घूमने जाते हैं वो आपके रोजमर्रा का हिस्सा है, यानी बागान है आपके, जिसमें आप चाय पत्तियों की खेती आपके यहाँ होती है।
1: जी,
0: एक बार जब ये चाय पत्ती के पौधे लग जाते हैं तो कितने वर्ष तक इसमें

0: से फसल उसमें से कोमल पत्तियां ही तोड़ी जाती हैं, तो कितने वर्ष तक ये फसल होती है?
1: कह सकते हैं जो ये एक बार बगान लगाने से 40 साल तक इसको फसल मिलते रहते हैं। तो एक साल में जैसे कि अप्रैल से लेके नवंबर तक काम चलते हैं जायका बगान में,
0: जी
1: तो
0: जी
1: हफ्ता में एक बार पाट तोड़ना पड़ता है।
0: अच्छा, वो ये चूंकि जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं पहाड़ों के, उस पर खेती होती है, तो उस पर क्या उस पर भी जैसे खाद वगैरह या फिर कुछ छिड़काव ऐसा करना पड़ता है?
1: ऐसे तो कोई पानी को जरूरत नहीं, तो फसल मिलना थोड़ा मुश्किल पड़ता है।
0: जी, यानी सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है। और पहाड़ों पर तो पानी बड़ा मुश्किल से निकल पाता होगा जमीन से।
1: हमारे कह सकते हैं तो ये ज्यादा प्लेन एरिया है,
0: जी,
1: और जैसे कि लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाने तक अरुणाचल बर्दन में था, अरुणाचल का ही पहाड़ होता है, तो हमारा ये इलाका में पहाड़ नहीं है, तो प्लान एरिया कह सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। और हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको?
1: अच्छा लगता है जो मोबाइल ऐप में जो प्रोग्राम आता है, जिसको ब्लूटूथ सिस्टम में कनेक्ट करके काम करने में अच्छा लगता है, तो जिसमें
0: और
1: वॉलंटियर
0: आज इस
1: सिस्टम पे
0: कार्यक्रम
1: काम
0: में
1: करते
0: कौन
1: करते
0: सा,
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: जी बिल्कुल, आज कौन सा गीत आपको सुनवा दें?
1: आज मैं पुराना गाना याद आ रहा है, जैसे कि हमारे मशहूर लिरिक्स जैसे भूपेन हजारिका जी का एक गाना लिखा था,
0: जी
1: जिस गाने को गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने, फिल्म का नाम रहेगा गजा गमिनी, और जैसे गाने के बोल है मेरे पायल बोले सम सम सम, ऐसे करके गाने हैं।
0: गजगामिनी
1: हाँ
0: जी, बड़ी चर्चित फिल्म है और इसकी यादें हैं हमें भी कि ये फिल्म बड़ी चर्चा में थी और बड़े बड़े इसमें आर्टिस्ट जुड़े हुए थे, वो चाहे कला के हों या संगीत के क्षेत्र के हों। तो अब ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी पसंद पर, और
1: दोस्तों
0: भूपेन
1: को
0: हजारिका,
1: डेडिकेट ले सकते हैं सर।
0: जी जी बताएं, भूपेन हजारिका का ही संगीत है इसमें।
1: हाँ,
0: जी
1: मेरा दोस्त असम से सुनने वाले हैं, धेमाजी असम से बिमल बसुमतारी, और गोलाघाट असम से रमेश पत्र, और सराइडी सुनारी असम से भाईकुन मुंडा, संजय मुंडा, नीतू देव, और हमारे माजुली असम से सुनने वाले दोस्त है देवाशीष हजूरिका,
0: जी
1: और कार्बी आंग से सुन रहे जोगेंद्र रंगी भी सुन रहा है, और राकेश को डेडिकेट रहेगा, शिवा लोहार को, और रमेश प्रजापति को, भगवान सिंह परमार को डेडिकेट रहेगा सर।
0: जी आप सभी को बताएं कि हमारे केंद्र के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं वेब्स, OTT, न्यूज ऑन या ऐप पर भी, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हैं हमारे। और अब ये गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: जी हेलो, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम है।
1: जी, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में मतलब समझ गया।
0: जी जी बताएं।
1: और बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ।
0: जी जी,
1: ट्राई करते करते आखिरकार आपने उठा ही लिया।
0: नहीं, उठाते तो हम लोग हैं, जब फोन लग जाए और लाइन दुरुस्त हो तो हमारी बात हो ही जाती है श्रोताओं से, लेकिन ये बहुत सारी चीजें हैं जो तकनीकी व्यवस्था पर निर्भर करती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक बांग्लाय कथा बोले ना, जंत्रेर जंत्रणा।
0: बिल्कुल,
1: बांग्लाय कथा बोले जंत्रेर जंत्रणा।
0: हाँ, यंत्र के ये जो यंत्र हैं उसके बारे में यंत्र ही जानते हैं। जी
1: तो चलिए, मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ।
0: जी जी, आपकी आवाज जानी पहचानी है, आपसे मेरी एक दो बार आपसे मेरी बात हुई है।
1: जी जी जी, मेरा गांव का नाम है रामकृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है श्री भूमि, असम से तालुका से।
0: जी बिल्कुल, अभी एक पिछला फोन भी आसाम से ही आया था हमारे पास। और
1: जी, और हमारे आपका वहाँ से फोन करते है हमारे एक छोटे भाई
0: देवाशीष।
1: देवजीत।
0: हाँ हाँ, तो ये पिछला फोन देवजीत जी का नहीं था, दूसरे एक श्रोता हैं, उनका फोन आया था। बासुमतारी है उनका नाम।
1: क्या? ओ हो हो हो, जी जी जी, मैं समझ गया, अमल बासुमतारी।
0: हाँ हाँ, अमल बासुमतारी। जी जी, और उन्होंने
1: उम्मीद करते हैं हमारे अरुण पांडे जी बहुत अच्छी है ना?
0: जी जी बिल्कुल, अभी थोड़ा सा ये जो गले में है ना मामला, वो हमारे यहाँ कभी बारिश कभी धूप ऐसी हो जाती है, तो थोड़ा सा
1: ऐसे ही तो माहौल चल रहा है।
0: हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये जो बरसात का मौसम है इसमें जो धूप निकलती है बहुत तेज होती है, और किसी न किसी काम से तो आपको दिन में बाहर निकलना पड़ता है।
1: जी जी जी, सही बात
0: जी। और कैसे आपके यहाँ खेती बाड़ी वगैरह हाल चाल, क्योंकि ये जो मानसून का सीजन है यहाँ, तो हरियाली बहुत बढ़ जाती होगी आपके इलाके में।
1: जी जी जी, एकदम चारों ओर हरियाली, और क्या होता है, बहुत एक फोटोजेनिक एनवायरनमेंट हो गया है।
0: जी जी जी,
1: और चारों हरा और खुशियां नजर लग रहा है।
0: बिल्कुल, वो इलाके
1: और
0: हैं, असम है, गंगटोक है, मेघालय है, जिधर इधर के लोग दार्जिलिंग वगैरह घूमने जाते हैं, और आप लोग हैं जो उस परिवेश में रहते भी हैं। पिछले श्रोता ने कहा कि उनके यहाँ चाय बागान है, चाय की खेती होती है, आपके इलाके में भी चाय बागान है?
1: ये जिक्र कर रहा था,
0: जी
1: करने का मन कर रहा था, आपने बोल ही दिया। हमारे यहाँ पे चाय का जो ये है,

0: क्या बोले,
1: आसाम
0: प्रोडक्शन वो तो ज्यादा है
1: जी जी,
0: और खास करके इतना कड़कदार इतना जायकेदार चाय,
1: वाह
0: क्या कहूँ, मतलब ये बयान नहीं कर सकता।
1: और चाय हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है,
0: जरूर बोलेंगे वाह
1: वाह
0: वाह क्या बात है,
1: क्या बात है। आसाम की चाय तो ऐसे ही बहुत मशहूर है और चाय की ऐसी तलब है, आदत है कि हमारे यहाँ तो हर किसी का स्वागत किसी भी मौके पे, मूड बनाना हो, कुछ काम शुरू करना हो तो चाय से ही शुरुआत होती है। चाय हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा एक तरह से ये पेय हो गया है।
0: जी, आपने सही बोला, एकदम सही बोला। और
1: तो अब कौन सा गीत सुनवा दे आपको जी बताएं,
0: रहन सहन और आत्मीय जो रिलेटिव आते हैं पहले चार से
1: जी जी,
0: आप पहन कर एकदम सेलिब्रेट करते हैं
1: जी, बिल्कुल कहीं भी कोई मिले जुले तो जाते समय आदमी चाय जरूर पूछता है पिलाता है
0: जी जी। तो अरुण जी एक बात कहो आपको,
1: जी जी बताएं,
0: लोग पूछते हैं इतने गम में भी खुश क्यों हो, लोग पूछते हैं इतने गम में भी
1: खुश क्यों हो,
0: मैंने कहा दुनिया साथ दे ना दे पर मेरा दोस्त अरुण पांडे जी मेरा साथ है।
1: क्या कहने, बहुत बढ़िया, ये आप लोगों का स्नेह है मोहब्बत है। और अब इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आपके लिए सुनवाएं
0: जी, आज एक गाना सुना दीजिए फिल्म का, फिल्म का नाम है जानी दोस्त, जितेंद्र जी पर फिल्म आ गया था
1: जी जी,
0: और साथ में श्रीदेवी जी है, और गाने का बोले ऐसे है, जवानी जवानी जलती जवानी होठ पे आई है आग प्यार की, जल जाए तू मुझे छू ले, जल जाए तू मुझे देखे,
1: क्या कहने,
0: लग जाए आग प्यार।
1: बहुत बढ़िया, यानी गाने का भी थोड़ा बहुत शौक रखते हैं आप। और अब गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं, जानी दोस्त फिल्म का नाम है, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, हिंदी वर्ग के बोल बापी लहरी का संगीत। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: और तालाब हैं उसमें पानी का होना बहुत जरूरी है। पूरा पारिस्थितिकी और पर्यावरण इस जल पर निर्भर करता है। और आपका कामकाज कैसा है? प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपको?
1: जी बिल्कुल, प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और आपसे जून में बात हुई थी, हमने कहा 2 महीने हो चुके हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो आप कॉल करना चाहिए। लेकिन पता है पिछले 3-4 हफ्तों से क्या हो रहा था कि मैं कॉल तो कर रहा था और हर बार मेरा कॉल भी लग रहा था, लेकिन कन्फ्यूजन में था, पावर बिल जाए पर उठे नहीं, 50 रिंग जाए पर उठे नहीं।
0: जी जी, थोड़ी सी दिक्कत आती है कई बार, वो टेक्निकल रीजन से कई बार लाइन में गड़बड़ी रहती है इस वजह से, लेकिन आज लाइन अभी दुरुस्त है। कौन सा गीत आपको सुनवा दें हम?
1: गाने तो बहुत सारे याद आ रहे हैं, अब बारिश भी नहीं हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि गाना ऐसे ही सुन ले जाए कि बारिश हो ही लगी, समझ लीजिए। फिल्म का नाम है बारिश और सुरेश वाटिकर की आवाज है, घाटा छा गई है।
0: हाँ, बारिश फिल्म का गीत।
1: जी बिल्कुल।
0: और अब ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उत्तम जगदीश का संगीत है, घटा छा गई है में लता मंगेशकर भी हैं साथ में, वर्मा मलिक के बोल। गीत सुनते हैं, नमस्कार, शुक्रिया।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: ग्राम गौर झमर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से रिपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर।
0: आज बिल्कुल राष्ट्रीय एकता की मिसाल हमारे कार्यक्रम में है। आसाम से कई फोन आए और इसके बाद अभी आपके इलाके से फोन आया, बहुत स्वागत है। कैसा मौसम आपके यहाँ है? बारिश हमारे यहाँ अभी तो अच्छी हो रही है इस समय।
1: बारिश हमारे यहाँ, मैं कहूँ कि पिछले 15 दिन से हो रही है, और मैं ये भी कह दूँ कि बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि बादल रोज हैं और बूंदाबांदी रोज हो रही है।
0: हाँ, कोई चीज जब रुक
1: ना,
0: जी
1: वो बारिश नहीं हो रही है, मतलब जितनी जरूरत है थोड़ी सी बूंदाबांदी होती है, बस रुक जाती है। तो कहा जाए कि
0: हाँ, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। हमारे यहाँ भी जुलाई में बारिश काफी कम हुई थी।
1: हाँ, और अभी भी हमारे यहाँ अगस्त में भी नहीं हुई है। और सच कह रहा हूँ, हमारे जो सागर जिले में नदी नाले हैं
0: जी,
1: वो अभी तक एक भी बार उसमें से पानी नहीं निकला है।
0: क्योंकि आपके इलाके में तो झील है।

श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप बुधवार को फोन कर सकते हैं सुबह में 10:10 से 11 बजे के बीच। फोन नंबर हमारा है 2221052 यानी 2221052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 05542 अर्थात 0542। और अब आज का ये प्रोग्राम समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। आपको बता दें कि ये जो रिकॉर्डिंग होती है बुधवार को, इसका प्रसारण शनिवार को 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे के बीच होती है। तो आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत सारे

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। आज की प्रस्तुति अरुण पांडे की थी। श्रोताओं, कार्यक्रम का शेष भाग आप सुन पाएंगे कल दिन में 12 बजे से।

प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

0: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।
1: सुन जा ठंडी हवा।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, दिन के 12 बजे हैं। कहकशां कार्यक्रम में आज आपको चंद गजलें सुनवा रहे हैं। पहली गजल सुदर्शन फाकिर की लिखी हुई, फनकार हैं राजेंद्र मेहता और नीना मेहता।

सुदर्शन फ़ाकिर की लिखी नज़्म अभी आप सुन रहे थे। राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की आवाज़ें थीं। प्रोग्राम की अगली पेशकश शायर हैं इब्राहिम अश्क, आवाज़ भूपेंद्र सिंह की।

कहकशां प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। वक्त 12:15 का है। अब सुनिए चंदन दास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में इब्राहिम अश्क का कलाम।

कार्यक्रम की अगली पेशकश अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह की आवाजों में है। ये कलाम है मदन पाल का।

0: मदन पाल की लिखी गजल अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह की। आज का कहकशां प्रोग्राम अब खत्म होता है।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपनी वादा।
4: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए
7: 0542227658।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: कार्यक्रम में आज हम आपको शिवा मिश्रा के गाए भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले सुनिए मीराबाई की रचना।

संत कबीरदास की रचना भी आप सुन रहे थे, स्वर था शिवा मिश्रा का। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है आशीष कुमार जायसवाल का ध्रुपद गायन। राग है शुद्ध सारंग, पखावज पर संगति की है अंकित पारिख ने।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आशीष कुमार जायसवाल का ध्रुपद गायन। राग था शुद्ध सारंग, पखावज पर संगति की अंकित पारिक ने। फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने वाला है अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सुकना में सहयोगी गोरखा नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरंग के अनुसार बैठक में लंबे समय से चली आ रही स्थायी राजनीतिक समाधान की मांग पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है। इसके बाद आज गृहमंत्री सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें बीएसएफ, एसएसबी, आईबी, पुलिस तथा केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नीतियों में भी व्यापक बदलाव कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
2: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर

0: ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है, ये रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
1: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। झारखंड के रामगढ़ जिले में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड स्टील पावर प्लांट में कल रात टरबाइन में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतकों की पहचान रांची के संजीव कुमार केसरी, बोकारो के विनीत महतो और गढ़वा के अभिषेक पांडे के रूप में हुई है। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। एक केमिकल रिएक्टर के अचानक फटने से औद्योगिक इकाई में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडैम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। सहायक पुलिस आयुक्त पिंडरा कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार साहेबलाल राजभर, पिता का नाम बुनेल, ये मड़ियाहूं जौनपुर के निवासी हैं और 20 जून 2026 को दिन में 10 बजे से ग्राम असवालपुर से लापता हैं। साहेबलाल राजभर की आयु है 55 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, एकहरा शरीर, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा है। इनके बाल अधपके हैं। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था शर्ट पैंट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो सहायक पुलिस आयुक्त पिंडरा कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त एक सूचना के मुताबिक शिवांश श्रीवास्तव, माता का नाम रागिनी श्रीवास्तव, ये नवापुरा लोहटिया कोतवाली वाराणसी के निवासी हैं और 2 जुलाई 2026 को पूर्वाहन 11 बजे से अपने घर से लापता हैं। ये दिमागी रूप से कमज़ोर हैं। शिवान श्रीवास्तव की आयु है 24 वर्ष, कद 6 फुट 5 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है।

आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था हरे रंग की लोअर और कत्थई टी शर्ट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी को सूचना दें। सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्मेघ वाराणसी से प्राप्त एक सूचना, इसके अनुसार एन आनंद नायडू, पिता का नाम वेंकैया कृष्णम्मा नायडू, ये जगन्नाथपुरम थिरोल तमिलनाडु के मूल निवासी हैं और 21 जून 2026 को रात में करीब 11 बजे से धर्मशाला मिसिर पोखरा वाराणसी से लापता हैं। एन आनंद नायडू की आयु है 65 वर्ष, कद 6 फीट के करीब, एक हरा मजबूत शरीर, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा है। इनके बाल पके हैं। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था सफेद कुर्ता। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध वाराणसी को सूचित करें। अभी आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। आज रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा। रात में 9:30 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से ही रिले अखिल भारतीय विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती। इसमें आज वृत्त चित्र का विषय होगा विज्ञान के रास्ते आज़ादी के मूल्य।

रात 8 बजे सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे ए हरिहरण, शाम 7:31 पर आनंद कृष्ण मासूम का काव्य पाठ आप सुनेंगे स्वरबेला कार्यक्रम में। शाम 6:30 पर कार्यक्रम किसान वाणी में आज बातचीत का विषय होगा आवश्यक खनिज तत्वों की कमी से पशुओं में होने वाले रोग, लक्षण और उपचार। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशीष कुमार वर्मा। इसी कार्यक्रम में लोकगीत के कलाकार होंगे बाबूलाल यादव और साथी। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज के आकर्षण है यूथ जंक्शन फोन इन कार्यक्रम। आज की बात, यूथ डायरी में आज के शब्द और रोजगार सूचना। नन्ही दुनिया कार्यक्रम होगा शाम 5:00। 2:30 पर कार्यक्रम गीतांजलि आप सुनेंगे। अंगनैया कार्यक्रम में 1:15 पर बातचीत का विषय होगा सब्जियों का प्रसंस्करण और उद्यमिता विकास। डॉक्टर स्वाति शर्मा विशेषज्ञ होंगी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से।

0: वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में यूपी जापान सरमायाकारी मीट 2026 में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जापान के पास सनअती फजीलत की गैर मामूली मीरास है और रियासत के पास नौजवानों की एक तवाना नस्ल है जो सीखने, तख्लीक करने और क्यादत करने के लिए तैयार है। हमारा मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि रियासत के नौजवान हुनर सीखें और काम के कल्चर सीखें, जिससे दुनिया भर में मांग है, बशमूल टोक्यो में।
1: हमारी पार्टनरशिप की सफलता केवल बिलियंस ऑफ रुपीज के इन्वेस्टमेंट से नहीं नापी जाएगी, इसकी अगली सफलता मिलियंस ऑफ जॉब्स होगी, न्यू टेक्नोलॉजीज होगी, ग्लोबल प्रोडक्ट्स और आने वाली पीढ़ियों के लिए शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में दिखाई देगी। हमारा लक्ष्य है यूपी में बने प्रोडक्ट जापान सहित पूरी दुनिया के ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाए।
0: वज़ीर-ए-आला ने कहा कि रियासत एक्सप्रेस वे, हवाई अड्डों और जदीद नकलो हमल के साथ मुसलसल तरक्की कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आलमी सलाहियत के मराकज के क्याम के लिए एक मजबूत माहौलियाती निज़ाम तैयार किया जा रहा है। उन्होंने जापानी कंपनियों को यहां सरमायाकारी और कारोबार कायम करने की दावत दी। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि इन्वेस्ट यूपी के अंदर एक वक्फ यामानशी डेस्क कायम किया जाएगा जो यामानशी हुकूमत और मकामी सनअतों और सरमायाकारों के साथ मुसलसल तालमेल बनाए।

0: का। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूलों के असातिज़ा को नेशनल टीचर्स अवार्ड पेश करेंगी। वजारत तालीम के मुताबिक इन असातिज़ा का इंतखाब जिला, रियासत और कौमी सतह पर 3 मराहिल के अमल के जरिए किया गया है। अवार्ड हासिल करने वालों का ताल्लुक 27 रियासतों, 7 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और 6 मरकजी हुकूमती तंजीमों से है। इनमें 26 मर्द और 22 खवातीन असातिज़ा शामिल हैं। ये प्रोग्राम दूरदर्शन और वजारत तालीम के स्वयं प्रभा चैनल पर बराह रास्त किया जाएगा। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में चीनी के काफी जखायर हैं और मुल्की जरूरियात को पूरा करने के लिए कोई कमी नहीं है। सार्फीन के अमूर खुराक और अवामी तकसीम की वजारत ने कहा है कि चीनी की कीमत गुज़िश्ता चंद हफ्तों में 48 रुपये से बढ़कर 55 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है और हुकूमत कीमतों पर मुसलसल नजर रखे हुए है। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने चीनी ताजरों पर 400 टन जखीरा करने की हद आयद कर दी है। ये हद यकुम अगस्त से 30 नवम्बर तक नाफिज है। हुकूमत ने आज 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड पर मुश्तमिल तमाम फिक्स डोज के इम्तिजाज की तैयारी, फरोख्त और तकसीम पर पाबंदी लगा दी है। वजारत सेहत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें नदवियात पर वाजे वार्निंग लाजमी कर दी गई है। ये दवाएं 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। ये कदम छोटे बच्चों की सेहत और हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए उठाया गया है। ये फैसला माहरीन की कमेटी और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशात के बाद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री लेवल जुडिशियल सर्विस के इम्तिहानात के लिए क्वालिफाई करने के लिए कानून ग्रेजुएट्स के लिए लाजमी 3 साल की प्रैक्टिस की मुद्दत को कम करके 1 साल कर दिया है। अदालत ने गुज़िश्ता साल के अपने ही फैसले में तरमीम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितम्बर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लखनऊ में आज सुबह खामोश ताजिए का जुलूस निकाला गया। जुलूस में हजारों जायरीन और अकीदतमंदों ने शिरकत की। जुलूस सुबह 5:30 बजे नाजिम साहब इमामबाड़ा से शुरू हुआ और अकबरी गेट समेत शहर के मुतद्दिद सड़कों से गुजरा। करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन और उनके साथियों की याद में 2 माह से जायद अरसे से मनाया जाने वाला सोग आज खत्म हो जाएगा। आज पूरी रियासत में दिन भर मजालिस और सोग का सिलसिला जारी रहेगा। लखनऊ में यह सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की बसों के लिए अब कंडक्टर के लिए बराह रास्त भर्ती दस्तयाब होंगी। 4 साल के बाद कारपोरेशन ने आउटसोर्सिंग भर्ती का अमल बंद कर दिया है। कारपोरेशन जल्द ही 4,000 से ज्यादा कंडक्टर की भर्ती शुरू करेगी। इस सिलसिले में हुकूमती हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। और रियासत के मुख्तलिफ अजला में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लखनऊ, अमरोहा, बलरामपुर में सुबह से ही वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश से आम लोगों को गर्मी से राहत मिली है। किसानों के मुताबिक इस बारिश से धान और गन्ने की फसल को फायदा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 6 रोज तक रियासत के मशरकी और मगरबी हिस्सों में कई मकामात पर बारिश और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:15 और 44 सेकंड हुए हैं। अब ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगनैया।

0: अंगनैया कार्यक्रम सुनने वाली सब बहन लोगन के नमस्ते और हम साथ में कहीं गौरी तहू के नमस्ते।
1: नमस्ते दीदी, तह के भी नमस्ते और कार्यक्रम सुनने वाली सब बहन लोग के भी नमस्ते।
0: ए गौरी।
1: हाँ दीदी।
0: कल के लिए बड़की भौजी से मिले।
1: अच्छा।

0: आ मिल के आवत रही तो जो रस्ते डहरी आवत रही ना,
1: हाँ दीदी
0: तो चारों तरफ देखा धान रोपल है, चारों तरफ हरियाली दिखाता रहा। और साथ में जब धाने का खेत खत्म भइल तो ऐली बगीचा में,
1: हाँ
0: और इतना हरियर हरियर पेड़ दिखात रहा कि लगल कि अब यही झूला डाल के जो ना और झूलल जाए, चलो दबा सावन का महीना,
1: हाँ
0: तो कहीं
1: दीदी
0: कि भौजी लोग आ जाए, ननद लोग आ जाए, तो झूला पड़ जाए डाल पर, तो कितना निक लगेला।
1: एकदम सही बात कहत हो दीदी। सावन का महीना होके और कजरी ना हो, झूला ना हो, तो समझा कि सावन बेकार है। लेकिन हम कही ना दीदी कि जौनी हरियाली के बात करत हो ना, एक समेटल सहेजल हमने का काम है वो। काहे से कि देखा धीरे धीरे कहीं ना कहीं हरियाली समाप्त हो जाता। ये हरियाली सावन में तो तनी दिखाई देता, लेकिन अबे जब गर्मी के मौसम आई तो ई सावन ई हरियाली तो के ना दिखाई दे, पेड़ पौधा बहुत कम देखे के मिली।
0: कहीं कि मने इतना स्वार्थी हो गल हो ना कि अपने स्वयं के स्वार्थ बदे, अपने मकान बदे, अपने दुकान बदे, अपने कारखाना बदे, ये जो पेड़ पौधा हुआ हम लोगन के जीवन के बहुत जरूर है कि भाई इन्हीं से ऑक्सीजन मिलला, जैसे कि शुद्ध हवा मिलला, जैसे कि हम लोग के जीवन चलला। लेकिन आज दिन प्रतिदिन इनकर कटाई तेजी के साथ भैल चल जाता हो, जैसे कि आ वाले समय में ना एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में हो जाए कि जब मनई जो न वृक्ष देखे बदे के छाया ढूंढे बदे के परेशान हो जाए।
1: बिल्कुल सही बात कहत हो दीदी। और देखा दीदी, अभी इहो देखे के मिला था ना कि मनई के घर में कोनो शुभ कार्य होता तो वो इतना तेज आवाज में लिया के डीजे बजाई देता हूँ। पहले का एगो मंगल कार्य होके घर में तो लगे कि हाँ कोनो शुभ मंगल कार्य होता, इतना निक सहनाई बजे,
0: हाँ
1: लोक गीत गाना वो गवनई होके, मनई मतलब घर का जवन बूढ़ पुरनिया हई, मेहरारू दादी माई हई, वो खुदे बैठ के गावे, इतना निक लगे सुने में। लेकिन जवन हई डीजे बजत है ना, ऐसे जवन ध्वनि प्रदूषण होता, एकर भी सीधा असर हमने के पेड़ पौधा पे होता।
0: बिल्कुल सही कहलू कि पेड़ पौधन पर भाई जैसे कह जाए ना कि मनई के हर चीज़ का जरूरत होला, सांस लेवे के, बढ़े के, खाए के, पिए के, वैसे ही देखा जीवन में जो वृक्ष हुए
1: हाँ
0: इनके भी जरूरी है। अगर देखा पौधा लगा के खाली छोड़ दा तो भाई पौधा अपने आप ना बढ़ जाए। ओके
1: हाँ
0: समय समय पर जैसे हम लोग बाल बच्चन का देखभाल करीला, रखवाली करीला, उनके जौन हो कि समय समय पर हर चीज़ का आवश्यकता होला, वैसे ही अपने पेड़ पौधन के भी बढ़े बदे के, उन्हें मजबूत होए बदे के, उन्हें फल देवे बदे के खाद का जरूरत होला, पानी का जरूरत होला और संरक्षण का जरूरत होला।
1: बहुत सही बात कहलू है दीदी। और देखा हो दीदी, जैसे कहल जाला ना कि ये सावन के महीना में बहन लोग खूब शौक सिंगार करत हैं, खूब सजत हैं, तो जैसे आपन सिंगार है ना, वैसे ही प्रकृति का सिंगार है तेवन पेड़ पौधा है। तो एक जैसे चेते के कहलू है तो ये सहेजल बहुत जरूरी है, काहे कि आपन श्रृंगार तब्बे होई जब प्रकृति का सिंगार होत रही।
0: अरे भाई तू बड़ी निके का बात कहलू है। साथ में एक बात ये भी कहें कि अपने बच्चन में भी हमें ये संस्कार के लिए कोई कि जे तरह से वो हम लोग बदे जरूरी हुआ, वैसे ही उनके जीवन के आगे बढ़ावा बदे ये वृक्ष ये पेड़ भी जरूरी हुआ। तो कहीं ना कि भाई चलत हुआ ये बारिश का मौसम, और ये मौसम में लोग कहना ना कि भाई कहीं पेड़ पौधा गाड़ दा था, देखा वो अपने आप थोड़ा सा ओके कम देखभाल भी करा तो बढ़
1: बढ़
0: जाला।
1: जाला।
0: तो ये भी हम लोग का दायित्व बनला कि अगर अपने आसपास में जगह खाली हो,
1: हाँ
0: क्यारी बना करके कुछ ऐसा वृक्ष लगा देवल जाए, कुछ ऐसा सब्जी लगा देवल जाए, जैसे कि अपन पर्यावरण भी जो ना हो कि अच्छा रहे, और साथ में सवेरे उठा जब हरियाली देखा आसे पास ना, तब मन ही का मन कितनों जो ना हो कि बेकार रहे, लगा लगा कि भाई
1: हाँ
0: हरियाली देख ला, तब मन अपने आप प्रसन्न हो जाला। और साथ में हम कहीं गौरी ना
1: हाँ
0: कि
1: दीदी
0: ये वृक्ष जो ना हुआ हम लोग बदे खाली छायादार ना हुए,
1: हाँ
0: ऑक्सीजन खाली ना देते हुए, ना जाने कितनी औषधिन का जो ना हम लोग के बदे काम में आवन है। एक
1: हाँ
0: साथ साथ देखा बहुत लोग भाई घर मकान बनवावत हुए, तो तरह तरह का जो है कि कुर्सी लगावत हुए, मेज बनवावत हुए, दुआरी में जो है तरह तरह का सजावट करत हुए, तो कहें कि ये पेड़ पौधन से ही तो हम लोग के घर का सजावट होता।
1: बिल्कुल दीदी, इतना अपन सुख सुविधा बदे इहे जरूरी है कि मनई के अगर अपना सुख सुविधा करे के है तो पेड़ के बचावल बहुत जरूरी है। ई आजे नाही, आवे वाला जौन भविष्य है, अपन कल का जौन बच्चा हवा सा, उन लोगन के बदे भी पेड़ पौधा लगावल बहुत जरूरी है दीदी। काहे कि जे भी पेड़ पौधा दिखत ना, जकरी नीचे हमनी के बैठत हैं, जा छहात हैं, सांस लेत हैं, ओकर फल खात हैं, तो ई हमनी के खुद के लगावल पेड़ ना है, ना हमने के बाबा दादा जे पूर्वज हमें उन्हें लोग के लगावल पेड़ है। तो आपन भी कुछ कर्तव्य होला कि ये जीवन से जाए से पहले कुछ पेड़ पौधा लगा के जाए, ताकि आपका जवन बच्चा हवा आवे वाला भाभी भविष्य के कुल लैका हवा उ लोग खातिर कुछ हो जाए।
0: बिल्कुल हो जाए। तो इसे हम लोग के सब लोग के मिल के चेतना के हुई कि अपने आसपास अपने जो ना कि समाज में सबके हम लोग चेतना ले आई कि भाई ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगावें, उनका संरक्षण।

0: करें और उनका देखभाल करें, जिससे कि आ वाली पीढ़ी और साथ में हम लोग भी जो है खुशहाल रहें और अपन पर्यावरण भी स्वस्थ रहे। और कहें कि गौरी
1: हाँ दीदी,
0: कुछ जरूरी संदेश सुन लेवल जाए,
1: हाँ
0: फिर हम
1: सुन,
0: लोग नीके के बत कही सुनल जाए।
1: हाँ तो सुनवाई था।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
3: सुनो ना,
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ, नंबर नोट करो
5: 0542227658।
3: ओ
2: 0542227658।
3: लो अभी फोन लगाता हूँ।
2: 0542227658।
0: गौरी
1: हाँ दीदी,
0: अभी हम लोग अपने वृक्ष का पेड़ पौधन का बात करते रहिए ना, लेकिन कही ना कि भाई मने के स्वस्थ रखे के हो, स्वस्थ रहे के हो, काम काज करे के हो, लेकिन बच्चन का देखभाल करे के हो, तो भाई अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देवे के चाहिए।
1: हाँ दीदी,
0: और खान पान में कही ना कि अगर हरी सब्जियन का प्रयोग कैल जाए, फल का प्रयोग कैल जाए, तो भाई वो हम लोग के जौन हो कि स्वास्थ्य बदे बहुत ही उत्तम होला।
1: सही बात कहलू है दीदी। आ ये चीज का भी ध्यान रखे के है कि जौन हरी सब्जियां है ना वो बहुत जल्दी खराब हो जाता, फल है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता, तो एक उपाय कैसे कैल जाए?
0: हम समझ गए रही तोरे बाती का मतलब कि भाई देखा कुछ सब्जी ऐसा होना ना
1: हाँ
0: कि उन्हें ऐसे बना के रखा जाला कि साल भर भी हो गए, जब भी हम लोग चाहे बिना मौसम के भी खा सके। तो कहीं यही पे निके का बत कही हम लोग सुना दें कि सब्जियों का प्रसंस्करण और उद्यमिता विकास कैसे हो, ये पे डॉक्टर स्वाति शर्मा से बतियोले हैं शिखा श्रीवास्तव। तब तो बही लोग निके का बत कही सुने।
6: श्रोता बहनी, आज हमारे साथ कार्यक्रम में आये हैं डॉक्टर स्वाति शर्मा जी। ये वैज्ञानिक हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान अदलपुरा वाराणसी में, और आप लोगन की आज जानकारी दी है कि सब्जियन का प्रसंस्करण कैसे कैल जाए और ऐसे वो दो पैसा कमा कैसे सकेली, मानी की उद्यमिता का विकास कैसे हो। तो बहनी आपका अपने कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे।
4: धन्यवाद।
6: आप पहले बहनी लोगन के ई बताएं कि ई सब्जियन का प्रसंस्करण का मतलब है।
4: देखिए सब्जी हम लोग रोज खाते हैं, सभी लोग खाते हैं। अब आप बताइए ताजी सब्जियों में आप कितने दिन रख पाएंगे? ताजी सब्जियों को हम लोग ज्यादा दिन नहीं भंडारित कर पाते हैं, तो इसको लंबे समय तक बचाए रखने के लिए ताकि हम उसे खा सके प्रसंस्करण करते हैं। प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग। जैसे टमाटर है, अगर लाल पके टमाटर हैं, आप उसको लाल पके टमाटर को कोल्ड स्टोर में कितने दिन रख पाएंगे? ज्यादा दिन नहीं रख पाएंगे। पर अगर आप उसका टमाटर का प्यूरी बना लें, पेस्ट बना लें, सॉस बना लें, पाउडर बना लें, तो आप उसको 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी आप उसको रख सकते हैं। तो ये जो भंडारण अवधि बढ़ाना है इसे प्रसंस्करण कहते हैं, ताकि उसका रूप बदलकर हम लोग उसे लंबी समय तक बचा सके और उसको उपयोग में ला सके।
6: बिल्कुल सही बात आप कहते हैं। जैसे कभी कभी बहनी लोगन सब्जी का अगर खेती करत हैं, चाहे भैया लोगन करत हुन, तो कभी कभी उत्पादन भी बहुत ज्यादा हो जाएला, तो ओकरे बदे ई माध्यम सबसे सही होला।
4: बिल्कुल सही कहा आपने, प्रसंस्करण हमें तभी करना चाहिए जब उत्पादन ज्यादा हो जाए, यानी कि मौसम में। बेमौसम प्रसंस्करण करने का कोई मतलब नहीं है। जब हमें जो रॉ मटेरियल है, जैसे मानिए अगर हमें टमाटर का प्रसंस्करण करना है, हरे मटर का करना है, मिर्च का करना है, फूल गोभी या पत्ता गोभी का करना है, तो जब मौसम है और हमारी फसल बहुत ज्यादा हो गई है, उसका बाजार में दाम नहीं मिलता है कई बार, जैसे टमाटर का दाम नहीं मिलता, वो रोड पर फेंके जाने लगते हैं, या फिर फूल गोभी का न्यूज में आ जाता है कि फूल गोभी खराब हो रही है, खेत में जोतना पड़ रहा है, उस स्थिति में हम लोग अपनी फसल को तुड़ाई उपरांत जो नुकसान हो रहा है उससे बचा सकते हैं। यही फूल गोभी हम लोग खेत में जोत देने की बजाय अगर हम लोग उसको निर्जलीकरण प्रक्रिया से सुखा ले, जैसे घरों में पहले सुखौता बनता भी था, पर वो जब धूप में सुखाकर बनता था तो उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं रहती थी, कई बार उसमें फफूंद लग जाते थे, काला पड़ जाता था। तो अगर हम लोग उसको वैज्ञानिक विधि से सुखाएं, बड़ी ही आसान विधि है, और आप लोग सीख सकते हैं बड़े आराम से। तो आप अगर उसको उस तरीके से सुखाएंगे तो आप उसको निश्चित ही एक

0: साल तक रख सकते हैं सुखाकर। सुखाकर रखना भी आसान हो जाता है क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है, उसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है और उसको आप फिर सब्जी के रूप में उपयोग करके खा सकते।
1: तो बात आप बहुत बढ़िया बतौली ना, जैसे छिम्मी होला तो छिम्मी जब खाए में इतना स्वाद लगेला, लेकिन ओके जब अपने से बहनी लोगन सुखवावेलिन तो का स्वाद कुल खत्म हो जाएला। तो का छिम्मी के प्रसंस्करण के द्वारा एके सुखवा के रखल जाला?
0: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे जो छिमी है, जो मटर की बात आप लोग कर रहे हैं, अगर मटर को जो हम लोग इंडस्ट्रियली जैसे प्रिजर्व करते हैं, उस विधि का नाम है इंडिविजुअली क्विक फ्रीजिंग,
1: अच्छा
0: IQF मेथड से करते हैं। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की भी लागत नहीं है। अब देखिए, जब हम लोग उद्यमिता विकास की बात कर रहे हैं तो आपको मशीन लगानी पड़ेगी, और इसके लिए सरकार का भी कई सारी योजनाएं हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा, PMFME के द्वारा, तो इससे आपको सहयोग मिलता है और आप कुछ इन्वेस्टमेंट करके एक छोटे सी यूनिट लगा सकते हैं, जिससे कि आप प्रसंस्करण करके उसको बढ़िया विधि से रखकर उसको बेच भी पाए बाजार में। जैसे अगर आप सिर्फ घर में करना चाहेंगे तो मटर नहीं कर पाएंगे तरीके से, पर अगर आप इंडिविजुअली क्विक फ्रीजिंग मेथड से उसको प्रिजर्व करें तो आप आराम से उसको 1 साल तक रखकर -20 डिग्री सेल्सियस में उसको रखना पड़ेगा, और रखकर हम लोग उसको बेच सकते।
1: अब उद्यमिता विकास के बाद जैसे आप करत हैं, हम बहनी लोगन के बतावल चाह तो इमन बहनी लोगन के का शुरुआत में करे के चाहिए, एकर प्रक्रिया जो योजना है एकरे बारे में तनी कुछ बताएं।
0: जैसे आपने बोला शुरुआत, तो सबसे पहले हम लोग जिस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे आसपास कौन सा रॉ मटेरियल ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। मानिए कि आपके यहाँ टमाटर हो जाता है, आपके गांव में बहुत टमाटर होता है, या मटर होता है, या फूल गोभी होती है, तो क्या हमें आसानी से उपलब्ध है। दूसरी बात कि मार्केट, किसको हम लोग आसानी से बाजार में बेच पाएंगे। फिर जो मशीन है, आपको उसमें क्या क्या मशीनें लगेंगी, और उसके लिए आप सरकार से किस योजना का लाभ लगाकर उसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, या फिर अकेले खुद के भी माध्यम से, आप उस फैक्ट्री या बिजनेस छोटा सा स्टार्ट करके आप उस चीज को बना सके। तो अगर आप एकदम ही घरेलू स्तर की बात करें तो आप अचार के बिजनेस से शुरू कर सकते हैं। पिकल बिजनेस भी बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है, आप आराम से, सभी महिलाओं को अचार बनाना आता है, इसके लिए ट्रेनिंग की भी आवश्यकता नहीं। जरूरत क्या है, थोड़ा कुछ मानकों को जानने की कि जो मानक है, जैसे अगर हमें अचार बाजार में बेचना है तो उसका मानक क्या है, तो उसमें 60% ड्रेन्ड वेट होना चाहिए, यानी कि जो आपका फल या सब्जी है, जब आप तेल या पानी गिरा दें उसमें, नमक का घोल जो बना के कुछ लोग अचार डालते हैं, कुछ तेल में डालते हैं, तो वो 60% से कम नहीं होना चाहिए। जो नमक है वो 12% से कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह हर चीज के कुछ मानक है, टमाटर के सॉस का मानक अलग है, निर्जलीकरण का मानक अलग है, तो इन मानकों का जब हम लोग उद्यमिता विकास की तरफ जा रहे हैं तो हमें कुछ मानकों को ध्यान में रखना है कि उसमें जो प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग जो केमिकल डालते हैं वो कितना डालना है, किस समय डालना है। फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको एक लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन मिलता है, जो जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अगर हमें उस खाद्य उत्पाद को बाजार में बेचना है, तो वो रजिस्ट्रेशन कराना भी हमें बहुत जरूरी है और बहुत ही आसान है। आप 100 रुपीज पर ईयर के कॉस्ट पे और इंटरनेट से आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। तो अगर हम लोग कुछ शुरुआती बातों को जान लें कि हम लोग को किस बिजनेस में जाना है, किस बिजनेस में कितना पैसा लगेगा और क्या हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग उद्यमिता का की तरफ बढ़ सकते हैं।
1: ये बात तो आप बहुत बढ़िया कहती भाई, घरे बैठे रहे इन बहनी लोगन तो उनके भी ऐसे 2 पैसा का आमदनी हुई। अच्छा जैसे कहली ना कि भाई जब उद्यमिता का बात हुई तब मशीन रखने के पड़ी, तो का अगर बहनी लोगन के पास जमा पूंजी नहीं हो तो ओकरे बदे का व्यवस्था बहनी लोगन करे, एकरे बदे सरकार की ओर से का सुविधा दीहल जाता?
0: इसी के लिए जैसे मैंने अभी बताया, एक आप पिकल बिजनेस में जा सकते हैं, उसके लिए आपको मशीन की आवश्यकता नहीं है। आप सोलर ड्रायर जो होता है उससे भी ड्राइंग करके आप ड्राइड प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं। इसके अलावा आप सॉस, ये सब का जो सॉस प्यूरी पेस्ट, ये सब भी आप घरेलू स्तर पर बना सकते हैं। इसके बस कुछ मानक है और कुछ आपको पता होना चाहिए, आप एक बार ट्रेनिंग ले लें। आप भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी आपको नियमित रूप से प्रसंस्करण की ट्रेनिंग होती रहती है। तो अगर आप आएंगे तो सॉस कैसे बनाना है, केचप कैसे बनाना है, उसको पैक कैसे करना है, कैसे हम लोग उसका FSSAI का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, ये सब बातें हम लोगों भी आपको प्रशिक्षण में बताएंगे।
1: अच्छा तो कितना दिन का चले लाई प्रशिक्षण?
0: प्रशिक्षण जरूरत के हिसाब से कभी 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, इतना ही चलता है। और इसके लिए आप ऐसा नहीं कि आप इंतजार ही करें, क्योंकि प्रशिक्षण 3-3 महीने, 6-6 महीने के अंतर पर तो होता ही रहता है, पर इसके अलावा भी अगर आप अकेले भी

0: बहुत जागरूक हैं, अगर आपको सीखने की इच्छा है तो आप हमारे संस्थान में आ सकते हैं। हम लोग आपको बताने की, आपके जो दुविधाएं हैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं।
1: अच्छा, अगर बहनी लोगन प्रसंस्करण करल चाहत हैं और प्रशिक्षण लेवल चाहत हैं तो का ओकरे बदे उनके अतिरिक्त शुल्क भी देवे के होला?
0: कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम में शुल्क होता है, कुछ अधिकतर में नहीं होता है। तो महिलाओं के लिए कोई ऐसे शुल्क की बात नहीं है, आप आइए, हम लोग आपको अपनी तरफ से पूरी मदद करेंगे। कुछ एक प्रोग्राम होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें शुल्क भी लगता है।
1: ये समय आपके यहाँ आपके संस्थान पर कोने कोने चीज का प्रसंस्करण कइल जाता और उद्यमिता के क्षेत्र में के तरह से आप आगे बढ़त हैं और बढ़ावत हैं लोगन?
0: भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने कई नए सब्जी आधारित जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्रोसेस प्रोडक्ट्स जिनको हम लोग कहते हैं, काफी सारे नई चीजें भी हम लोगों ने विकसित की है। जैसे हरी मिर्च का पाउडर है, करेला का चिप्स है, सहजन से सूप मिक्स है, सहजन का ड्रिंक मिक्स है, फिर आपको सहजन के आप बिस्किट भी बना सकते हैं। तो ये सब जो प्रोडक्ट है इनका न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस तो है ही है, क्योंकि आपको सब्जी जो इतनी न्यूट्रिशन से रिच होती है आप उसको सालों भर रख के खा सकते हैं, उस रूप में हम लोग परिवर्तित करना चाहते हैं उसको।
1: अच्छा, और कौन कौन चीज का प्रसंस्करण आपकी संस्थान से?
0: देखिए, सब्जियों में जो भी सब्जियां हैं, हमारा संस्थान करीब करीब 40-42 सब्जियों में काम करता है।
1: अच्छा,
0: तो हम लोग सब्जियों के प्रसंस्करण की ही बात करेंगे अभी।
1: बहनी लोगन के आपका सलाह देव, अगर वो उद्यमिता के अपनावल चाहते हैं प्रसंस्करण के द्वारा, तो का आप उनके सलाह देव?
0: उद्यमिता विकास के लिए प्रसंस्करण से अच्छा कुछ आसान तरीका मुझे लगता नहीं। और सबसे पहले अपने मन से डर निकाल दें, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप लोग बहुत अच्छा अचार ऑलरेडी बनाते हैं, छोटे से बिजनेस से अगर हम लोग शुरू करें, छोटी सी चीज से शुरू करें, हमें सिर्फ अगर आप FPO बना सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अकेले भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी सरकार के कई सारी योजनाएं हैं जिनका आप मॉनेटरी लाभ भी ले सकते हैं। आप क्या बनाना चाहते हैं, अगर आप टमाटर का सॉस, प्यूरी, टमाटर का पाउडर, आप टमाटर के पाउडर के बिजनेस में भी आगे बढ़ सकते हैं। कई सारे लोग हैं बनारस में भी जो लोग बना रहे हैं और वो लोग बेच भी रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजों से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं और उद्यमिता को अपनाकर एक आजीविका का आधार बना सकते हैं।
1: अच्छा, चलो चलो, तो ये बताई जो ना आप FPO का बात कैलिन है, हाँ, तो एकरे बदे बहनी लोगन के का करे के, कितना लोगन के जोड़े जुटावे के हुई?
0: FPO में 10 लोग कम से कम जुड़े होने चाहिए, और ज्यादा लोग रहते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहता है।
1: बहुत नीक लगल आपसे बात कही करके, और सब्जियन का प्रसंस्करण और उद्यमिता विकास पर आप हमारे श्रोता बहनी लोगन के इतना नीक जानकारी देलिन, एकरे साथे साथे उनके आय का माध्यम भी बतौलिन कि ई बन सकेला। इतना महत्वपूर्ण जानकारी देवे बदे डॉक्टर स्वाति शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दीदी, देखा कितना नीके का बतकई रहल है कि सब्जियों का प्रसंस्करण और उद्यमिता विकास का है, जिक्रे बारे में बतौनी है डॉक्टर स्वाति शर्मा और बतियावत रही है शिखा श्रीवास्तव बहिन। तो हम कही ना दीदी कि देखा एक बतकई के सुनला से वो बहिन लोग की बड़ा फायदा हुई जे आपन खुद का रोजगार कर चाहत है।
3: बिल्कुल, हम कहें कि भाई हम लोग का उद्देश्य भी यह रहा कि जौन भी बतकई हम लोग सुनावल जाए उसे बहिन लोगन के कुछ जानकारी मिले और जीवन में आगे अगर कुछ करे चाहत है तो कह सके। और इतना नहीं गौरी,
2: हाँ दीदी,
3: अब भाई देखा बात कही हो गई, बहन लोगों का मन अब मनसायन होए के चाहिए। और कहले रही ना कि भाई कजरी का बात करते लिए तो ला निकी का कजरी सुन ला समूह में।

0: देखत ही गौरी कि तुम मन गुनगुनात हौ। अब भाई बात भी ये गीत में रहल है, नैहर का बात आवे तो पहिन लोगन का मन अपने आपे जो हरियर हो जाला। आवे वाला हो त्योहार रक्षाबंधन का, ओकरे बाद जाई तीज। अब बहन लोग बड़ी तैयारी में समय हुई हैं कि भाई सावन का महीना चलत हो, नैहरे के जौन हो कि आई जाब लगल रही और कहें कि भाई मनई हम लोग कितनों बूढ़ हो जाए ना, लेकिन भाई जब नैहरे का बात आवला तो सबका मन हरियर हो जाला।
1: एकदम सही बात कहलू है कि जब सावन का महीना आवेला और जब नैहरे जाए का बात होला ना, तो का नवहीन आ का बुढ़िया सबका मन लैका हो जाला कि सब हम कब नैहरे जैती अपने बचपन के अंगना में खेलती आ कब बगीचा में झुलुआ पड़ी तो तनी झूले के मिली।
0: हाँ तो कहें कि भाई झलुआ बहन लोग झूले और जौन भी त्यौहार आवत हो ओकर आनंद लें। और साथे साथे में हम यो कहें कि चलत हुए बारिश का महीना, ये बारिश के महीना में जो है ना देखा तरह तरह का समस्या भी हो जाला, त्वचा संबंधी समस्या हो जाला, जुकाम हो जात बा, खांसी हो जात बा, तो कहें कि ऐसे में ना कि कुछ घरेलू उपचार या अपने आस पास जौन पेड़ पौधा हुआ अगर उनका हम लोग उपयोग कर जाए तो देखा कुछ हद तक हम लोग अपन बचाव कर सकते।
1: बिल्कुल सही बात कहते हो दीदी कि मन ही आवे जाए में ध्यान नहीं देवेला स्वास्थ्य का और इस समय स्वास्थ्य खराब हो जाला। तो यही से देखा जोन अपने घरे अंगने दुआरे और अगल बगल कुछ पौधा ऐसा होना गुड़कारी होना जैसे अपन स्वास्थ्य में उपयोग में लियावल जा सकेला।
0: हम कहें कि भाई तुलसी तो सबके अंगना में खिलला और ये बरसात में तो देखा तुलसी जगह जगह इतना हरियर छिलल बाणी के देखे में निक लगेला, लेकिन तुलसी एक ही लेकिन इमे बहुत चमत्कारी और औषधि गुण होला।
1: एकदम सही बात कहलु दीदी, ऐसे ही थोड़े ना तुलसी के कहल जाला कि आयुर्वेद में कहल जाला कि तुलसी जड़ी बूटियन का रानी है और संजीवनी बूटी है।
0: तो देखा इमे जो है ना जैसे अभी सर्दी खांसी जुकाम की बात करते ली है, मौसम बदलत हुआ है।
1: हाँ दीदी।
0: तो इमे लोग भीग जात हुए तो कहीं कि ऐसे में अगर मान लें कि आपके गले में खराश हो या जुकाम हो तो थोड़ा गोल मिर्च अदरक और तुलसी का पत्ता जो है एक काढ़ा बना लें और धीरे धीरे के पी तो बहुत हद तक जो है कि आपके आराम मिल जाए।
1: बिल्कुल, और इमे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज्यादा होला दीदी। अगर रोज सुबह खाली पेट उठ के 3 से 5 पत्ता अगर तुलसी का मनई चबाए ना तो ओके हर बीमारी से लड़े में बहुत मदद मिली।
0: देखा हो आजकल ना आजकल तुलसी का जो है रस भी बाजारे में मिलत हो ना, तो कहीं कि अगर जैसे आपके कोनो तनाव हो या इस तरह का जो चिंता हो, दिमाग में कोनो अशांति हो, तो कह जला ना कि इमे जो ऐसा तत्व होला कि जो अगर आप पानी में डाल के थोड़ा पी ले।

0: आपके जो है आराम हो सकेला।
1: ई तो सही बात कहलू है दीदी। और देखा तुलसी तो मतलब आयुर्वेद में चाहे ऐसे कह कि जीवन में उपयोग में लिया ले जाता, लेकिन पूजा पाठ में भी एकर बहुत महत्व है।
0: कहीं की कहलिए ना कि हर आंगन में तुलसी रहला, तुलसी जौन हो कि हम लोग के सौभाग्य का, और कहीं की घर में फले फूले लोग कहने कि कुल काम भाई कह के पहले ये काम करा कि साझी के सवेरे जौन हो कि नहा धो के पहले तुलसी माँ के जौन हो दिया जलावा जल दा, इससे कारण कि घर में सुख शांति और जौन हो लोगन में प्रेम
1: बिल्कुल।
0: रहला।
1: अगर खाए पिए से तो शुद्ध होइबे करेला, मनई मतलब स्वास्थ्य रहबे करी, लेकिन अगर तुलसी का पौधा घरे अंगना में लगल है तो ऐसे ही अगल बगल का वातावरण बहुत शुद्ध रहेला।
0: वातावरण का बात कहलू है तो साथ में यो कही कि अगर मान लें आपके गैस होता हो या अपच होता हो तो इनमें भी जो है तुलसी बड़ी कारगर होला। अगर एक ही जो हो कि आप सेवन में ले आवें तो
1: हाँ
0: गैस का समस्या हो, पाचन का समस्या हो, वो भी ठीक हो जाला।
1: दीदी सही बात कहलू हा। आ देखो जवन स्वास्थ्य का जुड़ल हमनी का बात करत हई जाना दीदी,
0: हाँ भाई स्वास्थ्य की बात करत हैं, लेकिन हम कहें कि कुछ जरूरी संदेश भी बहन लोगों की बतावे के हो।
1: हाँ
0: देखा जो है ना अपन हेलो अंगनैया कार्यक्रम हुई 27 तारीख के,
1: हाँ
0: ठीक है ना, इनमें हम लोग एक बहुत बढ़िया विषय लेके आवत है कि किशोरियों और महिलाओं में अवसाद का समस्या कैसे होता हो, का होता हुआ और एक समाधान कैसे हो सकला। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हम लोग के जो है कि सीधा लाइन से जुड़ी हैं और आपके समस्या का समाधान दी हैं, लेकिन कहीं ना कि भाई कहाँ फ़ोन करी है जरा एक भी तो बता दे गौरी।
1: हाँ दीदी तो फोन नंबर है 0542
0: हाँ हम कहें कि भाई देखा ये हम लोग के जो
1: इस हाँ
0: कोड हुआ है अपने बनारस का कि 0542, और
1: हाँ
0: फोन करी है दू
1: दूध
0: दू दू 1052। अब बता दी फिर से कि 0542 हम लोग का कोड हुआ है
1: हाँ
0: और 22 21 052 इस पे आप फोन करी हैं, और जो विषय हो किशोरियों और महिलाओं में अवसाद की समस्या व समाधान, डॉक्टर लक्ष्मण यादव से आप सीधे अपने जो हो समस्या का समाधान पा सके नहीं तो जरूर फोन करें। हम लोग के आप लोग के फोन का इंतजार रही, और कहीं घड़ी भी अब इशारा करत हो हम लोगन के कि वही लोगन से विदा लेवे के चाहिए, लेकिन साथे साथे मेला का समय चलत हो, भाई घर
1: हाँ
0: से बाहर निकले लेकिन बच्चन के लेके तो यातायात के नियमन का जरूर पालन करें जिससे कि आप भी सुगम से रहें और लोग भी रहें।
1: सही बात कहलू है दीदी कि रास्ता चलत समय या पार करत समय हमेशा ध्यान देव कि ललकी पियर की हरियर की बत्ती कब बरत या कब बंद या तो तबे रास्ता पार करें।
0: और साथ में हम कहें कि आप चलत हो तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें जिससे कि
1: हाँ
0: आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित
1: आप
0: रहे।
1: फोन पे मोबाइल से बात करते हुए कभी भी गाड़ी चलावे की कोशिश ना करें।
0: भाई देखा ये कुल बात सावधानी का हो, भैया बहनी लोग सुनत हुई हैं तो एक बार जरूर अमल करिए, लेकिन कहीं कि अब चले का बेरा होता तो चला चल जाए। नमस्ते।
1: नमस्ते।

ग्रामीण महिलाएं सुन रही थीं अपना कार्यक्रम अंगनैया। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत। कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं बाबूलाल यादव और साथियों की गाई जौनपुरी कचरी।

लोक संगीत कार्यक्रम में आज कलाकार हैं बाबूलाल यादव और उनके साथी। कांवर गीत के बाद आइए सुने इनकी गाई बनारसी कजरी।

0: इस बनारसी कजरी के साथ ही आज का लोक संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम में आप सुन रहे थे बाबूलाल यादव और उनके साथियों के गाए लोकगीत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, 2 बजने वाले हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिडडे न्यूज़।